और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कई दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है, नहीं बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है ठीक किया है।

मूवी के नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नायती जी लता जी का ये जों थे जिसमें दिलीप कुमार और शायरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शायरा मानू बहुत ही छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बीत जाएगा और 17 में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर फिर एक बार चलते हैं।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।
1: ऐसे भी हो तुम, जैसे भी हो।

कोई सूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है। सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंद एंजसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। तो यहां पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर और किशोर दादा आपको क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, चीज ही नमोई फिल्म है जी। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

और तुमसे ओ हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करने थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श 1967 के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

0: परवर का ये सॉन्ग है और आप जानते हैं रफी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: There is no need for panic. They are crossing some highways. Please remain where you are. And for your entertainment, Miss Colette will give you an exciting cabaret number.

और अब नाराज खुदा कहे करे दोस्तों, क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है, मूफी का नाम है, नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।

0: करण रे शाह जय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंगा और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता ना, पुराना गीत कितना अच्छा लगता।
1: जी हाँ सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी हीरो से आप सुनेंगे डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग।

0: Hey, ding dong, oh baby, sing a song. Ha shay wo log, jo waqt aane pe waqt diya karte hain. Ek bahut se sundar geet hum chun kar rakhe hain aap sabhi ke waaste. Jab hum jawan honge, jaane kahan honge, Shabir Kumar aur Lata ji aapko sunane wale hain from the movie Betab se hum pesh karte hain.
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

अभी आप सुन रहे थे जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी बेताब से हमने पेश किए हैं। रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। सोनी मेरी सोनी सोनी अनवर के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सोनी महिवाल से, अनवर और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे सोनी मेरी सोनी सोनी, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, फ्रॉम द मूवी सड़क से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम जो ना आते तो हम मर जाते। मनहर उदास के साथ में अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सड़क से हमने पेश किए हैं। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। ओ दिल भर जानिया, फ्रॉम द मूवी प्यार झुकता नहीं आपको सुनाने वाले हैं लता जी के साथ में शबीर कुमार जी।

लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे वो दिलबर जानिया फ्रॉम द मूवी प्यार झुकता नहीं। इस तरह आशिकी का अशर छोड़ जाऊंगा अमित कुमार आपको सुनाने वाले हैं।

अमित कुमार आपको सुनाने वाले थे इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे समाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उनको समझना आसान नहीं होता।

अभी आप सुन रहे थे वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम चाहे न चाहे समाना, अलका याग्निक के साथ में अभिजीत आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी खिलाड़ी से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों एक और गीत हो जाए आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है राह हमें उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई।

भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं। आशा पारेख इस फिल्म में काम किए हैं, साथ में मनोज कुमार जी और सिमी प्राण के साथ में। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं भरी दुनिया में आखिर दिल, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे भरी दुनिया में आखिर ड्यू को समझाने कहाँ जाए, आपको सुनाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी जी। रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, ज़िंदगी को बदलने के लिए अपना भी एक स्टेटस ज़रूरी है। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा से हम पेश करते हैं, दमायती मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

0: दिल ने पुकारा फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले थे दमायती मुकेश जी। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, फ्रॉम द मूवी मेरे हुजूर।
1: फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे मेरे हुजूर है फिल्म का नाम, गम उठाने के लिए मैं तुझिए जाऊंगा। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो मेरे सनम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। और ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बतलाना चाहती हूँ, और वो ये है, शिकायत तो बहुत है तुझसे ऐ ज़िंदगी, शिकायत तो बहुत है तुझसे ऐ ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया है तूने वो भी कितनों को नसीब नहीं होता।

अभी आप सुन रहे थे हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी फिर वही दिल लाया हूँ। द टाइटल आप सुनेंगे, लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, बातों को भूल जाना भी सुकून देता है कभी कभी। बातों को भूल जाना भी सुकून देता है कभी कभी। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है।

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे लखों है निगाह में जिंदगी की राह में फ्रॉम द मूवी फिर वही दिल आया हूँ इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में, तीसरी मंजिल है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। लेकिन ये गीत चलाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ वक्त के बारे में। वक्त सभी जिंदगी में, वक्त सबकी जिंदगी में वक्त बदलता रहता है, सबकी जिंदगी में वक्त बदलता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी गम तो कभी खुशी। ऐसा इंसान कोई नहीं है जिसकी ज़िंदगी में वक्त एक सा रहे, इसलिए अच्छे वक्त में कभी अपनी ज़ात और वक्त पर गुरूर नहीं करनी चाहिए और बुरे वक्त में कभी ना शुक्र और मायूस नहीं होना चाहिए।

दूसरी मंजिल से हमने पेश किए हैं, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। किस्मत में होगा वो चल कर आएगा, किस्मत में होगा वो चल कर आएगा, और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। लाट साहेब है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे।

सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे फ्रॉम द मूवी लाट साहेब से हमने पेश किए हैं। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होता है, तोड़ने वालों को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार होके चले, शिकार करने को आए शिकार होके चले। फ्रॉम द मूवी शिकार से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे तुम्हारे प्यार में हम बेकरार होके चले, शिकार करने को आए शिकार होके चले। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में फ्रॉम द मूवी आए मिलन की बेला से हम पेश करते हैं मैं प्यार का दीवाना।

0: मिलन की वेला है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आपने सुने हैं मैं प्यार का दीवाना।
1: दोस्तों, आग, पानी और विश्वास जंगल में साथ चल रहे थे। आग ने कहा, अगर तुम मुझे खो देंगे तो धुएं की तलाश करना, क्योंकि जहां धुआं है वहां आग है। पानी ने कहा, अगर तुम मुझे भी खो देंगे तो नमी, नमी माने फोख्त की तलाश करना, क्योंकि जहां नमी यानि फोख्त है वहां पानी है। मित्रों, तब विश्वास ने कहा कि अगर मैं खो जाऊं तो तलाश मत करना, तलाश मत करना, क्योंकि एक बार मुझे खो दोगे तो फिर मुझे कभी नहीं पाओगे। तो मित्रों, इसका निचोड़ है कि विश्वास कभी के ना तोड़ना, धोखा नहीं देना, नहीं देना बहुत बुरी बात है।

हम संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकते और परमात्मा से अलग कभी हो ही नहीं सकते।

भाई बहनों, दूसरों की भलाई करना कोई कर्तव्य नहीं है, ये एक खुशी की बात है। ये आपके स्वयं के स्वास्थ्य और प्रसन्नता को बढ़ाता है, जिससे आप सकारात्मक शक्ति के बिना अनुभव करते हैं मित्रों, और दूसरों के लिए कई अच्छे काम करते रहना चाहते हैं।

0: भाई बहनों, हो सकता है कि आप कई चीज़ों में परफेक्ट ना हो, लेकिन आपके अपने छोटे छोटे तरीकों से खास बने बिना कई चीज़ों परफेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए सलाह दी जाती है कि पहले ये सोचे कि आप क्या करना और कहना चाहते हैं, जो आपको चरित्र और भविष्य को निर्धारित करता है। मित्रों, कृपया अपने और दूसरों के हित में इसे ध्यान में रखें।
1: धनी लोग दूसरे को नौकर बनाते हैं, पर संत लोग दूसरों को भी संत ही बनाते हैं।

मेरे मन की हो जाए, इसी को कामना कहते हैं। ये कामना ही दुख का कारण है, इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता।

अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है।

इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चले जाते हैं। आज इसका शोक कर

जिसकी घर के दिए में तेल नहीं, वहां ज्योत जलाऊं मैं कैसे? मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे?

बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आकाशवाणी रेडियो पावन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, प्रिय प्रिय सुनने वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस खूबसूरत दिवस में। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। हर रोज की तरह आज भी उपस्थित हूँ आपकी सेवा में।

यहाँ से आरंभ करने जा रही हूँ हनुमान चालीसा के साथ, और वो भी पेश किया जाता है देनहाख देनहाख के रहने वाली श्रीमती

देना कह रहने वाली देना कह रहने वाली श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से शुभ दिवस कहते हुए सुंदर सा हनुमान चालीसा यहाँ से हम मिलकर और श्रवण कर

श्री नाम वाली फोनो मैन कंडम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर से श्री सुभाष श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से ये खूबसूरत दिवस में स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम

श्रीनाम लिफोनो मैन कंडाम हुक इंदिरा गांधी वेग से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से ये खूबसूरत दिवस में शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस कहते हुए ये सुंदर सा भजन स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में पेश किया गया।

बड़का कानून श्री भगवान का घर है, वहाँ पे ढेर नहीं अंधेर नहीं, बस न्याय होता है, जो जैसे करता है वैसा ही उनको मिलता है। भगवान के साथ ऐसे ही हुआ है कि वो सब धरती पर आकर और मनुष्य जन्म में हमको भी दिखाई है। तो सोचो, हम मनुष्य जो है, हम कब बच पाएंगे। सुंदर सा भजन रफी जी की आवाज में पेश किया गया है, देन हाँ से श्रीमती लैन बाबू राम जी की तरफ।

अब जहाँ बस नजर उतार कर देखो वही भगवान है। भगवान देखने से नहीं बल्कि महसूस भी कर सकते हो आप। पेश किया गया है दना अखमका इस रात नंबर 6 से हिंदू पास स्कूल फाहुन फरेनखिंग अलखमेन हिंदू ऑंडरवेस नीदरलैंड की तरफ से। जो कुछ है तेरे दिल में

तेरे हाल पर भगवान की नजर है। Nagelys gevind voor Park se Sondag groothandel. Sondag groothandel en groente en fruit. Malik in Kahe Sriman Parshuram Mohanlal. Or Sriman Parshuram Mohanlal ki taraf

शक्ति देना खुद दूसरों को जय से पहले खुद को अपनों को अपने आप को जय करे। पेश किया गया है दनाखलाइस कफेन फोर पार्क से सुंदर ग्रोथहांडल एन ग्रोथ एन फ्रॉइड मालिकीन का है श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में ब्रह्मा है, शब्द शब्द में सार, शब्द शब्द में शार, शब्द शब्द सदा ऐसा कहो, शब्द सदा ऐसा कहो जिसमें जिसमें उपजे प्यार। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको यहाँ से हम लेकर चलते हैं। दिनांक 1 नियुक्त श्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देश में है, उनकी तरफ से स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में यहाँ श्रवण करेंगे।

और वही प्रेम जो आप अपने मन में बसा ले तो ईश्वर आपके मन में आप में बस जाएगा। सुंदर सा भजन पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, दिनांक 1/10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देश में है, रोटरडाम होगफ्लिट टेक्सस वेग से, रोटरडाम होगफ्लिट टेक्सस वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर से, साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मकरसराज सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के जरिए से हम यहाँ श्रवण करेंगे। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आपके लिए लाइव एंड डायरेक्ट।

दिल छू जाने वाले ये दिल छू जाने वाले ये सुंदर सा भजन हमने यहाँ मिलकर और श्रवण की है। पेश किया गया है रोटरडम हुफली टेक्सस वेक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रैट सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति पंडित सुभाष महावीर ना माफ कीजिएगा मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से ये सुंदर सा भजन पेश किया गया है। सभी को सुप्रभात कहता है। Then I listen fan for Park say Anand Arjun Sharma Groot Handel Baby.

तेरी है जमीन, तेरा ही आसमान, तेरा ही मैं भी हूँ। ये सब तेरा, ये तन मन सभी जो है यही आप ही का है। बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखिए। बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखिए, आपका तमाम उलझने, आपका तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा।

सुंदर सा भजन पेश किया गया है देन अखलास कफीन फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा खुद हैंडल बेफे, इनका मालिक खुद है आनंद अर्जुन शर्मा। फाहोन रेडियो की डायरेक्टर स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेल खर्च की तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

या बस्ती में रहो, जंगल में रहो या बस्ती में रहो, लहरों में रहो या कश्ती में रहो, मेरे प्यारे सुनने वालों, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, पर रहो भगवान की भक्ति में। जहाँ से हम सभी का नया पार होने वाला है, फाउन रेडियो के डायरेक्ट स्टाफ पर्सनल, सभी फ्रेवेलर्स के तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते पेश किया गया। देने सुनने के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको दिल से धन्यवाद।

छुपती नहीं मोहब्बत छुपाने से, छुपती नहीं मोहब्बत छुपाने से, जो दिल में छुपे हो वो यादों से कभी नहीं जाते।

क्या बात है, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। फिल्म का नाम भी नहीं, फिल्म के नाम तो हम तो नहीं देखते हैं, फिर भी ये गीत का बोल है झूम बराबर झूम। और गीत गाने वाला था के सुखविंदर सिंह, महालक्ष्मी आयर, शंकर महादेवन। और इस फिल्म में भी काम की है द बिग बी विथ हिज सन, लवली सन, अभिषेक बच्चन, बॉबी दियोल, प्रीति सिंता, लारा दत्ता, ये सब मिलकर इस फिल्म में काम की है।

क्या बात है, क्या बात है। फिल्म हम देखे तो बंटी और बबली से निकाला गया यह सुंदर सा गीत सुनने वालों, और इसमें स्टारिंग हैगा अभिषेक और अमिताभ बच्चन जी। मुझे याद करने वाला तेरा साथ हूँ मैं, मुझे याद करने वाले तेरा साथ हूँ मैं, जो कभी ना ख़त्म होगी वो ही दिल की बात हूँ मैं। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। और अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। रॉक एंड रोल सुनिए एक बार फिर। I never, never.

कभी तू तो मेरे संग अभी डोल, और ये निकाला गया है फिल्म का नाम, हम देखे तो कभी अलविदा ना कहना, और सिंगर गाने वाला है शंकर महादेवन शान और कल्पना आयर, इनमें स्टार गास्ट है जरूर से द बिग बी। समय और समझ, समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। फिर भी उजाला का दीपक हमेशा जीवन में जलाते रहे। हे प्रभु लिफहेर अस्टिब्लिफ लेख्ट यू लिफ्ट फॉल आर्मन ओम मैन फैमिली एंड फ्रेंडन सोरख एरफोर दैट्स ऑलटेड बस्कर्म्ड फैलख खलीफ्ट एंड खसीखन सेन। God save us, प्रभु की असीम कृपा हम सभी पर बने रहें।

सोना सोना मेजर साहब से निकाला गया है ये सुंदर सा गीत, जो हम यहाँ से मिलकर और साथ में लुफ्त उठाए हैं, मज़े ली हैं।

0: तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म, कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरा जाना है।
1: It's Valentine's Day.

अच्छा चली चली फिर हवा चली एल्बम से हम देखे तो फिल्म बागवान से ये सुंदर सा गीत यहाँ से मिलकर और इस वक्त में हमने श्रवण की है। रोने से तो आंसू भी पराया हो जाता है, रोने से आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से, जी हाँ मुस्कुराने से तो पराया भी अपने हो जाते हैं। मरना तो सभी को है एक दिन, मरना तो सभी को है एक दिन, तो चलो बाकी दिनों में हम जी लेते हैं।

इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। रफी जी की आवाज में यहाँ से हमको सुनाए आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में।

0: में आपकी हर बात रहेगी, दिल में आपकी हर बात रहेगी। जगह छोटी है, जगह छोटी है, मगर आप बात जरूर रहेगी।
1: अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को

इतना सुंदर सा गीत हमको सुना है किशोर दा और लता जी। सुनने वालों, जाने कैसे कब कहाँ क्या हो जाता है पता नहीं, पर ये ज़रूर कहूँगी चाहे हम बहुत, चाहे हम भुला दूँ ज़माने को, चाहे हम भुला दूँ ज़माने को, बल्कि आपके प्यारे मुस्कान को हमेशा हम याद रखेंगे।

एक दिल ही तो था जो सिर्फ हमारा था। सुनिए जी, एक दिल ही तो था जो सिर्फ हमारा था, बातों बातों में उन्होंने इसे भी चुरा लिया।

0: प्यार भरे गीत आपके लिए यहाँ से चलाया जाता है सुनने वालों। कहते हैं कि प्यार चाहे परफेक्ट हो या ना हो, पर सच्चा जरूर होना चाहिए। वो लफ्ज बने ही नहीं जो बयां करे कि मुझे कितना मोहब्बत है तुमसे।
1: पता है

जी हाँ, पल्लू लटके, पल्लू यानी कि आपने सुने पल्लू। कितना प्यार करते हैं हम तुमसे, कितना प्यार करते हैं हम तुमसे, ये कहना नहीं आता। बस इतना जानते हैं कि, बस इतना जानते हैं कि बिना तुम्हारे रहना नहीं आता। फाहा रेडियो पे आप चुने

हाँ, तो आपने सुने ये सुंदर सा गीत, जिससे सोच कर ही चेहरे पर खुशी आ जाए, वो खूबसूरत एहसास हो तुम। और कहते हैं कि सिर्फ दो ही चीजों से डर लगता है, एक तेरा रोना और दूसरा तुझे खोना।

किशोर दा और लता जी के आवाज़ में यहाँ से हमने एक बार फिर सुने कि अब के सावन में तुम्हें दिल में कई बार याद करता हूँ, तुम्हें दिल में कई बार याद करता हूँ, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे बस तुम चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, ये मत पूछो क्यों चाहिए।

बरसात की एक रात से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है। तेरी तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है। पहले नहीं पहले नहीं, अब सोचने लगा है कि हम की जिंदगी की हर लम्हे में तेरी ज़रूरत सी लगती है।

0: आपको एक बार फिर यहाँ से स्वागत किया जाता है प्रभु। मेरे प्यारे सुनने वालों, महेश रेखा जी की आवाज में यहाँ से हमने सब मिलकर और श्रवण कर ली है और आपको लेकर चलते हैं ये खूबसूरत दिवस और खूबसूरत बनाने के लिए।
1: Volgende liedje is een lingerie, geschreven voor Krishna.

गोपियन भी नाचे साथ में अश्विता बिसाई जी की आवाज में। कहते हैं कि कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, ना ही मुश्किल क्यों ना हो, सच उसे अपनाना ही पड़ता है। कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती, दिल को ये भी समझाना पड़ता है। आसान नहीं है जिंदगी में सुकून के दो पल निकालना, आसान नहीं है जिंदगी में सुकून के दो पल निकालना। भूलनी पड़ती है कई उलझनों को सब्र से सुलझाना पड़ता है।

संदीप बदलू जी के आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर लिया, आपके लिए पेश किया गया है। कहते कि धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, पर आगे बढ़ना जरूरी है। नहीं सुलझती उलझने कहीं भागकर, नहीं सुलझती उलझने कहीं भागकर, उनका सामना करना जरूरी है। अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। इस बार आपके लिए द किंग सुंदरपुप।

सुंदर पोपो जी की आवाज में। वक्त रहते वक्त की कीमत समझना भी जरूरी है, वक्त रहते वक्त की कीमत समझना जरूरी है दोस्त।

छोड़ सकते कल पर, सब शुरुआत आज से करना जरूरी है। माना कि मिलता है सफलता, सफलता का फल सही वक्त आने पर। जी हाँ, माना कि मिलता है सफलता का फल वक्त आने पर कोशिश का बीज आज ही बोना जरूरी है। कोशिश का बीज आज ही बोना जरूरी है ना मेरे दोस्त। आपके लिए एक बार फिर यहाँ से सुंदर पोपो जी की आवाज में।

मर्डर लव्स हमको सुना दी सुंदर पोपो जी। सुंदर पोपो जी की आवाज में आपके लिए पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों। छोटी सी इस जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना है ना, अपने और अपनों की दुनिया को खुशियों से सजाना है, ये भी आवश्यक है।

आपको तमाम खुशियाँ और खुश नसीबियाँ पेश किया जाता है मेरे प्यारे सुनने वालों। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। आप शायद अपने जिंदगी में ये सब जरूर से महसूस किया हुआ होगा, देखा होगा, सामना किया होगा कि जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है ना, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। हाँ मेरे दोस्तों, इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुरा कर चलते रहिए। सहयोग एक बहुत ही महंगी चीज है। सहयोग एक महंगी ही चीज है। इससे हर किसी से उम्मीद ना रखे, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल के अमीर होते हैं। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो से आप और हम जुड़े हैं इस वक्त।

0: जीते ही जीते श्रवण जी अपना पुण्य कमा ली, हम लोग को सुना दी श्रवण कुमार जी के कहानी। वक्त खुद को समय जरूर दे, आपकी पहली जरूरत आप खुद है मेरे प्यारे दोस्तों। खुद को समय जरूर दो, आपकी पहली जरूरत आप खुद है। क्योंकि मेरे दोस्तों, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए मेरे दोस्तों खुद को समय जरूर दे, अपने आप को समय जरूर दे, ये आपके पहली जरूरी है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

सुंदर सा बैठक गाना भजन आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है मेरे प्यारे सुनने वालों, और इसी के साथ इस बार आपके लिए पेश किया जाता है सत्यानंद रेखा जी की आवाज़ में

उस्ताद सत्यानंद रेखा जी के आवाज में अभी का फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से पेश किया जाता है। ए मेरे दोस्त, मैंने तीन लोगों को हमेशा परेशान देखा है। एक मददगार, एक वफादार और दिल के साफ लोगों को हमेशा परेशान देखा है। बाकी दोगले और चापलूसों को हर जगह फिट और परफेक्ट देखा है।

गीत में गाकर सुना दे कि जब से हो गए हैं यंग, हाँ आप जवान हो जाएंगे तो जरूर से ऐसा ऐसा दर्द दिल में समाएगा। और कहता है कि अच्छे के साथ बुरा भी, अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। अगर इसे आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप जरूर ये मानेंगे कि बात सही है।

हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल फिल्म का नाम है मेरे प्यारे सुनने वालों। हाय मेरा दिल फिल्म का नाम 1968 के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। 1968 कितने बीते हुए समय लग रहा ना, और वाकई में समय बहुत जल्दी से बीत रहा है। कहते हैं कि गिरने के बाद उठना ही असली जीत है मेरे प्यारे सुनने वालों। हार से डरने वाले लोग कभी जीत का स्वाद नहीं रखते।

दोस्तों, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है, पुरुषों की आत्मा किस छिद्र से निकलती है और स्त्री की आत्मा किस छिद्र से निकलती है, पापी और पुण्यवान व्यक्तियों की आत्मा किन किन छिद्रों से बाहर निकलती है, इस विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इन पापी आत्माओं को अगला जन्म कौन सा मिलता है, इसका भी वर्णन भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथ हमें बड़े रोचक लेकिन गंभीर अंदाज में समझाते हैं कि आत्मा कैसी होती है, शरीर में कहाँ रहती है, मृत्यु के वक्त क्या होता है, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और पाप पुण्य के हिसाब से आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। तो चलिए आपको गरुड़ पुराण का संपूर्ण ज्ञान विस्तार से समझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूले और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। आत्मा शरीर में कहाँ और कैसी होती है? शास्त्रों के अनुसार आत्मा हर जीव के हृदय में एक सूक्ष्म रूप में निवास करती है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, चेतना का वो दिव्य कण जो हमारे पूरे शरीर को जीवन देता है। शरीर तो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना नाशवान पदार्थ है, लेकिन आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा का कोई रूप रंग नहीं, पर इसे एक चमकते हुए छोटे प्रकाश की तरह समझ सकते हैं। गरुड़ पुराण में तो कहा गया है कि यमदूत जब आत्मा को निकालते हैं तब वो अंगूठे के आकार की सूक्ष्म पुरुषाकृति होती है, यानी आत्मा इंसान के सूक्ष्म शरीर के रूप में होती है, बिल्कुल मानो आपके शरीर का नन्हा प्रतिरूप जो

0: दायु प्राण डगमगाने लगते हैं, सांस उखड़ने लगती है, खांसी और बलगम से नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और आंखें उलड़ने लगती हैं, शरीर बिल्कुल निर्जीव सा निश्चेष्ट होने लगता है, मानो आत्मा की पकड़ ढीली पड़ रही हो। कई बार मरने वाले की जीभ से झाग निकलने लगता है, मुंह लार से भर जाता है और वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। गरुण पुराण भयावह तुलना करता है कि प्राण निकलते समय मनुष्य को ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। सोचिए जरा कितनी तीव्र पीड़ा। मृत्यु का क्षण इतना यातनामय होता है कि वो एक पल नहीं बल्कि युगों के बराबर लंबा महसूस होने लगता है। कई पापी आत्माएं तो असह्य डर और दर्द से अपने मल मूत्र तक छोड़ देती हैं। शास्त्र कहते हैं ये सब पिछले कर्मों के कारण है। जिसने जीवन भर अधर्म और पाप किए हों उसके लिए मौत का स्वाद बहुत कड़वा और भयावह होता है, लेकिन जिसने धर्म पूर्वक जीवन जिया हो उसकी मृत्यु अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से हो सकती है। पापी के प्राण हरने कौन आता है? गरुण पुराण वर्णन करता है कि अंतिम क्षणों में सिर्फ मरने वाली को एक दिव्य दृश्य दिखता है। आसपास रोते परिवारजन दिखाई दे सकते हैं, पर साथ ही यमराज के दूतों का आगमन भी होने लगता है। ये यमदूत बड़े भयंकर रूप वाले होते हैं, काले डरावने चेहरे, सिर पर खड़े रोंगटे, लाल जलती आंखें, हाथों में फंदा और मूठ वाले डंडे। उनके दांत भालों जैसे नोकीले हैं, लंबे नख हैं और रूप इतना भयानक कि उन्हें देखकर ही मरते हुए का हृदय दहल जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि इन यमदूतों को देखकर प्राणी भय के मारे चिल्लाने लगता है, उसका हृदय तेजी से कांपने लगता है और रोम रोम सिहर उठता है। यमदूत पापी आत्मा के पास आकर कोई नम्रता नहीं दिखाते, वे क्रोध में गरजते हुए कहते हैं,
1: अरे पापी चल, आज तेरा समय पूरा हुआ, तुझे हम यमराज के पास लेकर जा रहे हैं।
0: मरने वाला अपने रोते परिवार को देखकर विलाप करता है, पर यमदूत उसको जरा भी मोहलत नहीं देते। वे लोहे के फंदे से उसका गला कसकर बांध देते हैं और जबरन आत्मा को शरीर से घसीटने लगते हैं। आत्मा का बाहर निकलना बेहद दर्दनाक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी की आत्मा को कान, नाक, आंखें आदि जिस भी छेद से घसीटना पड़े ये दूत बलपूर्वक खींचते हैं और उस दौरान आत्मा चिल्लाती हुई शरीर से अलग की जाती है। वो आत्मा अपने ही पुराने शरीर को अंतिम बार व्याकुल नजरों से देखती है जब यमदूत उसे दूर ले जाने लगते हैं। दोस्तों अब जानते हैं आत्मा किस अंग या छिद्र से शरीर छोड़ती है। ये सवाल बड़ा रोचक है, आत्मा आखिर शरीर से निकलती कहाँ से है? हमारे शरीर में कुल 9 प्रमुख द्वार या छिद्र माने गए हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, ये 7 ऊपरी द्वार हुए और 2 निचले द्वार, मल द्वार, गुदा और मूत्रेंद्रियो जननेन्द्रिया। कुछ मतों में सिर के ऊपर सहस्रार या ब्रह्मरंध्र को 10वां द्वार भी कहा गया है, पर शास्त्रों में प्रायः 9 द्वार की ही बात आती है। आत्मा इन द्वारों में से किसी एक से निकल सकती है, मगर कौन से छिद्र से निकलेगी ये निर्भर करता है मरने वाले के कर्मों पर। गरुड़ पुराण का मत स्पष्ट है, यदि आत्मा पुण्यात्मा है, अच्छे कर्मों वाली है, तो वो शरीर के ऊपरी ऊर्ध्व द्वारों से प्रस्थान करेगी और यदि पापी है तो निचले छिद्रों से। पुण्यवान लोगों की आत्मा प्रायः सिर के ऊपर स्थित द्वार, ब्रह्मरंध्र या मुंह, आंख, नाक जैसे ऊर्ध्व छिद्रों से निकलती है। इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है आत्मा की गति ऊपर ऊर्ध्व लोकों की ओर होगी, दिव्य मार्ग देव यान से जाएगी। विशेषकर जो आध्यात्मिक साधना में पारंगत हैं, योगी हैं या परमात्म भक्त हैं, उनके सहस्रार से आत्मा निकलकर परम लोक की ओर जाती है। माना जाता है कि यह मुक्ति का मार्ग है। इसके प्रीत पापी आत्माएं प्राण छोड़ती हैं तो निम्न द्वार से उनका जीवन निकलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी के प्राण मल मूत्र के रास्ते नीचे निकल जाते हैं। आत्मा अगर गुदा द्वार या जननेन्द्रिय जैसे निचले छिद्र से निकले तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। ये दर्शाता है कि आत्मा अधोगति नीचे लोकों की ओर जा रही है। ऐसे प्राणी की आत्मा मर कर सीधे यमलोक, प्रेतलोक या नरकों की ओर जाएगी। साफ शब्दों में ऊपरी द्वार से आत्मा का का निकलना पुण्य का फल है और निचले द्वार से निकलना पाप का फल। यही कारण है कि हमारे शास्त्र मृत्यु के समय भगवान के नाम स्मरण, गंगा जल, तुलसी दल आदि देने को कहते हैं, ताकि अंत समय शुभ हो और आत्मा ऊर्ध्व मार्ग से शांति पूर्वक निकले। अब खास तौर पर अगर स्त्री की बात करें, स्त्री की आत्मा भी यही नियम मानकर शरीर से निकलती है। पुण्यवती

0: स्त्री जिसकी जिंदगी धर्म पूर्ण रही हो, सेवा सत्य संयम से भरी, उसकी आत्मा ऊपरी छिद्र मस्तक नेत्र नासिका या मुख में से किसी से प्रस्थान करेगी। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसी आत्मा के निकलते वक्त चेहरे पर एक शांत चमक दिखाई देती है, शरीर बिना ज्यादा तड़पे शांत हो जाता है। दूसरी ओर पापिनी स्त्री जिसने जीवन भर अधर्म अत्याचार अनैतिक कर्म किए हों, उसकी आत्मा अक्सर नीचे वाले रंध्रों से बाहर जाती है, जैसे गुप्तांग या गुदा मार्ग से। ये उसके भारी पापों का संकेत है कि मृत्यु भी कष्टदायी हुई और आत्मा अधोलोक को चली। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पापी के प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं। मतलब यही कि स्त्री हो या पुरुष, पाप पुण्य के अनुसार आत्मा के निकलने का मार्ग तय होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की गति कैसी होती है? शरीर छूटने के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। अब आत्मा अकेली है, न कोई रिश्तेदार साथ जाता है, न दौलत न शरीर, केवल उसके अच्छे बुरे कर्म साथ हैं, जिनके आधार पर उसे आगे का मार्ग मिलता है। हिंदू धर्म में दो मुख्य मार्गों का वर्णन मिलता है, देवयान देवों का मार्ग और पितृयान पितरों का मार्ग। इसका मतलब सरल भाषा में, जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, जिनका जीवन पवित्र रहा, वे देवलोक या ईश्वर के धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर चलती हैं, और बाकी आम आत्माएं पितृलोक या यमलोक जाने वाले मार्ग से गुजरती हैं, जहां उनके कर्मों का फल नरक या स्वर्ग निर्धारित होता है। यमलोक की यात्रा पितृयान मार्ग। अधिकांश आत्माओं को मृत्यु के बाद यमदूत यमराज की सभा यमपुरी में ले जाते हैं। जैसा हमने देखा, पापियों को क्रूर यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। ये यात्रा गरुड़ पुराण में काफी लंबी बताई गई है, लगभग 86,000 योजन, यानी बहुत लंबा रास्ता पार कर आत्मा यमराज के शहर पहुंचती है। रास्ते में 16 भयानक नगर आते हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग कष्ट और मनोव्यथा झेलती है। जब हम उदाहरण के लिए कहीं तपती रेत की सड़क है, जहां प्यास से व्याकुल आत्मा नंगे पैर दौड़ती है, तो कहीं आग के जंगल की लपटे हैं, कहीं बर्फ जैसी ठंड। एक भयानक नदी आती है, वैतरणी नदी, जो रक्त पीप और गंदगी से भरी है, जिसमें मगरमच्छ सांप जैसे जीव हैं। जिसने जीवन में गोदान किया हो या पुण्य किए हो, उसे इस वैतरणी को पार कराने नाव या गाय की पूंछ मिल जाती है, पर जो पापी हो वो इसमें डूबकर यातना पाता हुआ पार होता है। आत्मा को प्रत्येक क्षण एहसास होता चलता है कि उसने जीवन में क्या पाप किए। यमदूत रास्ते भर उसे कोड़े मारते हैं, धक्के देते हैं और डराते हैं। आत्मा भूखी प्यासी थकी हुई बेबस सी आगे बढ़ती है, उसे अपने परिवार की याद सताती है, पर अब पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। लगभग 47 दिन या कुछ हफ्तों का समय इस यात्रा में लग जाता है, भिन्न ग्रंथों में अलग वर्णन है। अंत में यमपुरी यमराज की नगरी आ जाती है, जहां यमराज को दक्षिण दिशा का फाटक पापी आत्माओं के लिए खोलने को कहा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमपुरी के 4 द्वार हैं, पूर्व उत्तर पश्चिम और दक्षिणा। दक्षिण द्वार से वे आत्माएं लाई जाती हैं जिन्होंने जीवन भर पाप और अधर्म किए, यमराज के दरबार में पेश होने के लिए। वहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा पढ़कर सुनाते हैं और यमराज उनके दंड या पुरस्कार का फैसला करते हैं। फिर उन आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक भेजा जाता है, या कुछ को थोड़े बहुत पुण्य हो तो कहीं अल्प सुख भोगने स्वर्ग में भी भेज सकते हैं। लेकिन स्वर्ग नरक का समय खत्म होने के बाद ज्यादातर आत्माओं को फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। ये संसार चक्र यूं ही चलता रहता है। देवयान मार्ग ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्न आता है कि क्या सबको यमदूत ही लेने आते हैं? नहीं, भक्ति और पुण्य के बल पर कुछ आत्माओं के लिए रास्ता थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि स्त्री ने अपना जीवन बड़े सत्कर्मों में लगाया, ईश्वर भक्ति की या योग साधना द्वारा आत्मोन्नति की, तो मरते समय माहौल फर्क होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी धन्य आत्मा की मृत्यु शांत होती है, अंतिम सांसें भी आसानी से निकलती हैं, चेहरे पर तेज होता है, आसपास परिवार जनों द्वारा राम नाम भगवान की बातें की जाती हैं, गंगा जल तुलसी दल दिया जाता है जिससे उसकी आत्मा को संबल मिलता है। सबसे बड़ी बात, उस आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटने नहीं आते, उसके बदले दिव्य दूत या देवदूत आते हैं, जो बड़े आदर से आत्मा को साथ लेते हैं। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रायः सिर के ऊपर या अन्य ऊर्ध्व द्वार से निकलती है, जो बताता है कि इस जीव ने जीवन पवित्र जिया। देवदूत आत्मा को सम्मान पूर्वक यमपुरी के दक्षिण द्वार से नहीं, बल्कि अन्य द्वारों पूर्व या उत्तर से अंदर ले जाते हैं। इसका फल यह होता है कि यमराज की सभा में भी उसके साथ कठोरता नहीं होती बल्कि गरिमा के साथ पेशी होती है। कई बार कहा जाता है कि
1: मेरे प्यारे सुनने वालों, ये कथा को मैं यहाँ पर थोड़ा विश्राम दे रही हूँ।
2: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: मन्ना दे जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत तेरी कर्म कहानी, ये आप ही जानते हैं और परमात्मा जी जानते हैं। जैसे हमने अभी कथा में सुन रहे थे और पंडित जी बता रहे कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो सब पर नोट करता है कि हम क्या करते हैं। एन सेखेक ओक बाय देस यू एइग गेवेतन इज यू रेखतर। जो कथा का हमने विश्राम दी थी यहाँ से हम आपके लिए
1: जन्म लेना पड़ता है। ये संसार चक्र यूं ही चलता रहता है, देवयान मार्ग ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्न आता है कि क्या सबको यमदूत ही लेने आते हैं? नहीं, भक्ति और पुण्य के बल पर कुछ आत्माओं के लिए रास्ता थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि स्त्री ने अपना जीवन बड़े सत्कर्मों में लगाया, ईश्वर भक्ति की या योग साधना द्वारा आत्मोन्नति की, तो मरते समय माहौल फर्क होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी धन्य आत्मा की मृत्यु शांत होती है, अंतिम सांसें भी आसान से निकलती हैं, चेहरे पर तेज होता है, आसपास परिवार जनों द्वारा राम नाम भगवान की बातें की जाती हैं, गंगा जल तुलसी दल दिया जाता है जिससे उसकी आत्मा को संबल मिलता है। सबसे बड़ी बात, उस आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटने नहीं आते, उसके बदले दिव्य दूत या देवदूत आते हैं जो बड़े आदर से आत्मा को साथ लेते हैं। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रायः सिर के ऊपर या अन्य ऊर्ध्व द्वार से निकलती है, जो बताता है कि इस जीव ने जीवन पवित्र जिया। देवदूत आत्मा को सम्मान पूर्वक यमपुरी के दक्षिण द्वार से नहीं बल्कि अन्य द्वारों पूर्व या उत्तर से अंदर ले जाते हैं। इसका फल यह होता है कि यमराज की सभा में भी उसके साथ कठोरता नहीं होती बल्कि गरिमा के साथ पेशी होती है। कई बार कहा जाता है कि ऐसे धर्मात्मा को यमलोक में भी नहीं रुकना पड़ता, सीधे इंद्र आदि देवताओं के लोक स्वर्ग में स्थान मिलता है। कुछ श्रेष्ठ आत्माएं जिन्होंने ईश्वर की अनन्य भक्ति की हो वे देह छोड़कर सीधे परम धाम चली जाती हैं। जैसे विष्णु भक्तों के लिए कहते हैं कि विष्णु दूत आते हैं और उस आत्मा को बैकुंठ ले जाते हैं, फिर यमराज के दूत तो पास भी नहीं भटकते। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि पुण्य आत्माओं को मृत्यु के बाद ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है जहां कोई कष्ट नहीं होता, जबकि पापियों को कष्टदायक रास्ते से यमलोक ले जाया जाता है। कुल मिलाकर जैसे कर्म वैसा फल, मरने के बाद आत्मा या तो देवयान प्रकाश मार्ग पकड़ती है या पितृयान धूम्र मार्ग पकड़कर के लिए यमराज की ओर जाती है।
2: दोस्तों, अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका जिक्र सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पाप कर्मों के आधार पर अगले जन्म की योनियां गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कौन से पाप के फल स्वरूप आत्मा को अगले जन्म में किस योनि से जानवर आदि में जन्म लेना पड़ता है। खासकर स्त्रियों के संदर्भ में कुछ पाप ऐसे बताए गए हैं जिनसे उन्हें बड़ी ही नीच योनियों में जाना पड़ सकता है। आइए कुछ उदाहरण कहानी की तरह समझें। पति से बेवफा या पर पुरुष गमन व्यभिचार। यदि किसी स्त्री ने अपने पति को धोखा दिया, पर पुरुष के साथ संबंध बनाए या उल्टा आचरण किया तो शास्त्रों में उसका फल भयंकर बताया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है जिसमें ऐसी स्त्री मरने के बाद लंबे समय तक नरक में सड़ती है और फिर लाखों बार गिद्ध बनकर जन्म लेती है। सैकड़ों वर्षों तक सुवर्णी से मादा सुअर की योनि में रहती है और सैकड़ों जन्म तक जंगली हिंसक जानवर बनती है। देखिए, एक पति को त्यागने या विचार करने का कितना भयानक परिणाम बताया है। पहले असंख्य नरक यातनाएं, फिर गिद्ध सुअर हिंसक जानवर बनना। अंत में कहा गया है कि यदि कभी वो स्त्री फिर मानव रूप में आती भी है तो विधवा दरिद्र और रोगिणी बनकर जन्म लेगी। गरुड़ पुराण में भी कहा है कि जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं उन्हें अगले जन्मों में भयानक राक्षस योनि भुगतनी पड़ती है। विशेषकर यदि वो स्त्री किसी ब्राह्मण या पूज्य कुल की थी तो वो पिशाच ब्रह्म राक्षस बनकर भटक हैं। एक जगह ये भी वर्णन है कि पराई स्त्री से संबंध रखने वाला अगले जन्म में सियार होता है। अब स्त्री ने खुद अपने शरीर को पाप कर्म में लगाया तो उसे भी उस पाप का फल समान ही मिलता है। यानी ऐसी पापिनी स्त्री भी मरकर आत्मा के रूप में प्रेत योनि में भटकती है और फिर कुतिया सियारिन जैसी नीच योनि में जन्म लेती है जहाँ जीवन भर उसे तृष्णा और तिरस्कार ही मिलता है। गर्भपात या गर्भ की हत्या। हमारे धर्म ग्रंथों में गर्भ गर्भपात को एक बहुत बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि ये सीधे एक अनजान जीव की हत्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यमराज कहते हैं, जो व्यक्ति गर्भ में पल रहे शिशु का नाश करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद सीधे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। कुंभी पाक वो नरक है जहाँ उबलते तेल की कड़ाहियों में आत्मा को उबाला जाता है। वहाँ इस पापी आत्मा को अत्यंत लंबे समय तक 14 इंद्रों की आयु जितने समय तक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी गर्भ हत्या महापाप है, जो लगभग ब्रह्म हत्या के बराबर दंड का भागी बनाती है। नरक यातना के बाद ऐसी आत्मा का छुटकारा नहीं होता, उसे बहुत से नीच जन्मों से गुजरना होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विवरण मिलता है कि गर्भपात करने वाले अगले 100 जन्म तक सुअर की योनि में जन्म लेते हैं, फिर 7 जन्म तक गाय की योनि में, 7 जन्म तक सर्प की योनि में, फिर 60,000 वर्षों तक कीड़े मकोड़े बनकर दंदगी में पैदा होते हैं।
3: यह क्रम सुनकर ही रूह कांप जाती है। सुअर जैसी तुच्छ और गंदी समझी जाने वाली योनि, फिर नाग जैसे डरावने जीव और न जाने क्या क्या। अंततः ऐसे पापी को इंसान की देह भी मिलती है तो भयंकर रोगों से ग्रस्त निर्धन निश्चित अपरिवारिक जीवन मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में गर्भपात को कदापि उचित नहीं माना गया। कहा गया है कि माँ के गर्भ में बच्चे की हत्या सीधे घोर नरक का द्वार खोलती है। चोरी और छल कपट, अगर स्त्री चोरी चकारी करती है, धोखे से दूसरों की वस्तु चुराती है, तो उसके अनुसार भी अगले जन्म में दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण विभिन्न तरह की चोरी पर अलग अलग योनि की बात बताता है। जैसे जो अनाज चुराता है वो अगले जन्म में चूहा बनता है, जो वाहन चुराता है वो ऊंट बनता है, फल चोरी करने वाला बंदर बनता है, बर्तन चुराने वाला गिद्ध या कौआ बनता है, जिसने गाय चुराई हो वो भी गिद्ध जैसा पक्षी बनता है, क्योंकि गाय जैसा पवित्र प्राणी चुराना महापाप है। जो कपड़े चुराता है वो अगले जन्म में कीट बनता है। गरुड़ पुराण में कहा है, कपड़ा चोर पतंगा होता है। महिलाओं से जुड़ी एक बात ये भी आती है कि जो स्त्री दूसरी स्त्रियों के गहने या कपड़े चुराती है उसे कुष्ठ रोग तक हो सकता है, यानी मानव जन्म मिला भी तो अपंग अवस्था में। कुल मिलाकर चोरी का परिणाम भी कभी पशु योनि तो कभी भयंकर बीमारी के रूप में मिलता है। यही कारण है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है, चोरी सबसे घिनौनी आदतों में है, इसका पाप जीवन भर पीछा करता है।
4: निंदा पर निंदा और असत्य भाषण। अक्सर लोग सोचते हैं कि जुबान के पाप शायद उतने बड़े नहीं होते, लेकिन पुराण कहते हैं कि दूसरों की निंदा या बेहुदा बातें करने का फल भी कष्टदायक जन्मों में मिलता है। जो लोग दूसरों को बेवजह बदनाम करते हैं, सत्यनिष्ठ भले लोगों की बुराई करते हैं, अगले जन्म में उन्हें नीच योनि या अपंगता झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण में आता है, जो व्यक्ति पापपूर्ण आचरण करके लोक में बदनामी कमाता है वो अगले जन्म में कछुआ बनता है। इसे आप यूं समझिए कि जिसने जीवन में कुचर्चा कलंक और कलह फैलाए उसका अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जो अधोगति का प्रतीक है। कछुए का जीवन जल मिट्टी में गुजरता है, बहुत धीमा और तुच्छ समझा जाता है। इसी प्रकार अत्यधिक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति भी अगले जन्म को खराब करती है। कहा गया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अंधा पैदा होता है या मधुमक्खी जैसा कीट बनता है जो केवल डंक मारना जानता है। लगातार झूठ बोलने वाले की अगले जन्म में जुबान काम नहीं करती, वो गूंगा या हकला पैदा होता है। जिन महिलाओं को दूसरों की खुशियों को देखकर जलन होती है और वे चुगली निंदा में लिप्त रहती हैं, वे अगले जन्म में संभवतः उसी तरह किसी तुच्छ जानवर जैसे कौवा या चील की योनि में जाएंगी, जो हमेशा मल में मुंह मारते हैं। शास्त्रों में गिद्ध कौवे को अक्सर नीच कर्मों का फल बताया गया है। गरुड़ पुराण तो पापों की पूरी सूची देता है। कुछ का जिक्र पुरुषों के संदर्भ में है, पर स्त्रियां भी वही कर्म करें तो परिणाम समान ही रहते हैं। जैसे गुरु की हत्या करने वाला मिर्गी का रोगी होकर जन्मता है, निर्दोष जीवों पर अत्याचार करने वाला बौना बनता है, जो अपने पति या परिवार को छोड़कर दूसरों से अवैध संबंध बनाए उसका अगला जन्म ऐसा पशु होगा जिसे शिकारी मार डालेंगे, यानी उसकी जिंदगी बहुत छोटी और कष्टपूर्ण होगी।
5: जो अपने पति की हत्या कर दे या उस पर अत्याचार करे, ऐसी स्त्री को अगले जन्म में पति का सुख नसीब नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर तक अकेली रहकर दुख भोगती है। ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण या संत की हत्या का पाप तो सबसे भारी है। ऐसे पापी को कई जन्मों तक घोर नरकों में जलने के बाद ऊंट,
4: सुअर घोड़ा जैसे पशुओं की योनि में भटकना पड़ता है। गौ हत्या का पाप भी अनंत नरक भोगने के बाद सर्प और अन्य जहरीले जीव बनकर भुगतना पड़ता है। यहाँ तक कि जो लोग माता पिता या अतिथियों का अपमान करते हैं वे अगले जन्म में बहरे अंधे कुबड़े जैसे अंगहीन शरीर लेकर पैदा होते हैं। और भगवान की निंदा या शिव आदि देवों का अपमान करने वाले अगले जन्म में गुप्त रोग त्वचा रोग जैसे दुख झेलते हैं। स्पष्ट है हर छोटे बड़े पाप का फल किसी न किसी योनिगत दुर्गति या मानव जन्म में भारी कष्ट के रूप में मिलता ही है। इन सब कथाओं का सार यही है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। स्त्री हो या पुरुष जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे मरने के बाद और अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ये पुराणों में बताए विवरण कभी कभी हमें डराने के लिए भी होते हैं ताकि हम अनुचित कर्मों से दूर रहें। आखिर गरुड़ पुराण स्वयं एक दर्पण की तरह है जिसमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाकर हमें सचेत किया जाता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा अमर है पर अच्छे बुरे कर्मों की गठरी उसके साथ चलती है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को चाहिए कि जीवन में सदाचार सत्य प्रेम और धर्म के मार्ग पर चले। ऐसा करने से न सिर्फ मौत के वक्त कम कष्ट होगा बल्कि आत्मा उज्जवल मार्ग से जाएगी और हो सकता है पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाए। अगर भूलवश पाप हो भी जाए तो शास्त्र प्रायश्चित और सुधार का मार्ग बताते हैं। ईश्वर भक्ति दान पुण्य सेवा और पश्चाताप से कर्मों का बोझ हल्का किया जा सकता है। आखिर में हिंदू धर्म ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि जीवन एक अनमोल अवसर है आत्मा के विकास का। मृत्यु अटल सत्य है लेकिन वो अंत नहीं एक नई शुरुआत है। इस शुरुआत को सुखद या दुखद बनाना हमारे हाथ में है। हमारे कर्म ही तय करेंगे कि मरने के बाद यमदूत हमारा हाथ पकड़ेंगे या विष्णुदूत। हम नरक के अंधकारमय रास्ते पर जाएंगे या देवों की ज्योतिर्मय राह पर। इसलिए ऐसी कथाएं सुनकर डरे नहीं बल्कि सबक लें। जीवन को इस तरह जिए कि अंत समय शांतिमय हो ताकि जब हमारी आत्मा देह त्याग तो चेहरे पर मुस्कान हो, हृदय में भगवान का नाम और मार्ग दिखाने को दिव्य ज्योति हो। यही इन पुराण कथाओं का संदेश है। तो दोस्तों इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के आत्मा के सफर के विषय में बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो

बात तो सही है कि नेकी तेरा साथ चलेगी बाबा, और ये सुना दी हमको आज के प्रोग्राम में महेंद्र कपूर जी। महेंद्र कपूर जी की आवाज में नेकी तेरा साथ चलेगी। फिल्म का नाम आप जरूर जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, फिल्म का नाम आंसू और मुस्कान। और हम देख रहे हैं ये फिल्म नई कंटीन सेफ अंतक में रिलीज किया गया है। आपको लेकर चलते हैं देखे तो एक बार फिर महेंद्र कपूर जी के आवाज में और क्या फरमा रहे, जरा हम मिलकर सुने।

अवश्य अवश्य महेंद्र कपूर जी ने फरमा दी है कि क्यों करता है हेरा फेरी, ये दौलत ना आपके है ना मेरी है, ये दौलत हमको कमाना पड़ता है, ये जीवन सफल बनाने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए औरों को काम आने के लिए।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

Por Pong Sing Power Star Pong Sing ka भोजपुरी सॉन्ग है अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग और यहां पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की ये लड़की क्या है दोस्तों लड़की दीवानी

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

को ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेंगे

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरि सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सोकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सोकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

और ये था सविता सिंह दोस्तों, कुछ शोका सॉन्ग आपके हमने सुनाए हैं। तो हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल सॉन्ग के बारे में, लोकल जोंग की ओर हम चलते हैं। तो लोकल जोंग क्या क्या है, आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में।

प्राण में आखिरी प्राण बस आखिरी एक लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी जीव जरन का है हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

यानी लोकल सॉन्ग थे आपके हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद चलते हैं और वो अपने ही देनहाख का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल्सों आप लोग को मार सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोहम्मद सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोहम्मद सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना

लो मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को और ये चलाए हैं, गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने, हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोंग हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोंग है।

और दोस्तों ये था और ये अनिल भीम। हम एक सॉन्ग का और जाते हैं आंद्रे रॉय की ओर, इंद्रनील रॉय की ओर हम जाते हैं दोस्तों।

और तेरी दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

0: son eres tú. तो हम चलते हैं, हम चलते हैं, यानी कि
1: people around the globe, this one's for you.
2: Here we go.
0: और कुछ फिजी सॉन्ग आज को लोकल फिजी सॉन्ग सुनाएंगे.

मेरा रंगला और राम की सुन कविता, राम की सुन का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है यारो। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो क्या होगा, देवी निहा सरस्वत राधे व्रजा, और क्या क्या नाम है इसमें दोस्तों, आओ सुना जाए ये क्या सुनाते हैं।

कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मैं थी मुकेश, द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस। आपको सुनाइए ये शानदार गीत, जबकि आप भी सुन रहे हैं और मैं भी चला रहा हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबका स्वागत करते हुए तो सुनिए, मैं आपको ये सुना रहा हूँ इस तरह से। लता जी है, जी हाँ लता जी है, फिक्टोरिया 2003।

संगीतम चलाने वाले हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपके क्या राय है मेरे बारे में। जी हाँ, आपकी क्या राय है मेरे बारे में, लेकिन रफ़ी साहब मेरे लिए पूछ रहा है।

रवि साहब और शारदा जी मिलके आपको सुनाए हैं कि मेरे बारे में क्या राय है, तो आप सुन ही चुके हैं। अब सोच लीजिए, बताना है तो बताइए, और नहीं बताओगे तो मैं कुछ आपसे बताता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है आप ये सोच रहे हैं कि गंगा तूने तो कोई हंगामा की नहीं। जी हाँ, अभी तक कोई हंगामा नहीं किया, तो लीजिए।

राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: मिस रूपा।
1: वाह क्या बात है, हंगामा हो गया। आशा जी, आशा जी आपको सलाम है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर, और फिल्म अनहोनी में से निकाले हैं निक दिन त्रिय सीफ तक का ये गीत। चलिए फिल्म धड़कन तो आपने अवश्य देखे होंगे। जी हाँ, चलिए धड़कन में से निकालते हैं ये शानदार गीत।

कि तुम मेरी बाहों में हो। अलका याग्निक जी और सोनू निगम जी मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाए नदीम श्रवण के साज पर, और पेश हुआ फन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म जीत में से निकाल कर हमने चलाए। उम्मीद है यह लवली गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। ये सांस लेने का सिलसिला की बात हमने की ना, अब इसकी निर्णय आप ही लीजिए कि कैसा हुआ होगा, कैसा होना चाहिए था। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलिए फिल्म क्रिमिनल की ओर जाते हैं। फिल्म क्रिमिनल तो आपने अवश्य देखे होंगे, जी हाँ, फिल्म क्रिमिनल में से निकाल रहे हैं और ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

फिल्म क्रिमिनल में से निकाले हैं जी नहीं, सोनू निगम नहीं, कुमार सानू, कुमार सानू का ये द्वैत अलका जी के साथ हम आपको सुनाए हैं। चलिए एक गीत हमने बहुत प्लानिंग में रखे हैं और वो गीत है कि प्रेम प्यार मोहब्बत में कितनी हसरत होती, कितनी खुशी होती है, कितनी खुशियां लोगों को मिलता है, कहाँ तक सच है कहाँ लेके झूठ है, ये दोनों साहिबान आपको मिलके सुनाएंगे, यानी कि कुमार सानू और साधना सरगम, ये दोनों इसके बारे में आपको सुनाएंगे। बस सुनिए।

साधना सरगम के साथ। जी हाँ, साधना सरगम के साथ कुमार सानू आपको सुनाए नदीम श्रवण की लिखी हुई गीत, नहीं बजाए हुए गीत, समीर की लिखी हुई गीत। जी समीर की लिखी हुई गीत और नदीम श्रवण ने बजाए हैं। चलिए कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं। आप चाहे जहाँ भी होंगे धरती पर, प्रेम प्यार मोहब्बत तो हमेशा होता है, चाहे धरती पर जहाँ भी होंगे। तो यही कहानी अलका याग्निक जी और कुमार सानू मिलके दोनों आपको सुना रहे हैं। बस ध्यान से सुनिए।

हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। ये प्यार मोहब्बत की दास्तां आपने सुने हैं फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। लेकिन किशोर कुमार जी ये कह रहा है, आपने तो दिल के बातें की हैं, लेकिन मैं दिल से तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही तरफ का है। किशोर कुमार जी आपको सुना रहे हैं, सुना बस इस तरह से आ रहा है एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए इस तरह से। गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा यहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन किशोर कुमार जी भी तारीफ़ करने से चूकता नहीं है। तारीफ़ ही तारीफ़ लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार, एक बार फिर से तारीफ़ की तारीफ़, तारीफ़ ही तारीफ़।

बस आपने किशोर कुमार जी की तारीफ सुनी ना, फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर, हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, फिल्म का नाम है जंगल में मंगल, उसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। प्रेम प्यार मोहब्बत में कसमें भी खाते हैं, जी हाँ, पता नहीं आप कभी कसम खाए होंगे या नहीं, बस इसका निर्णय आप ही लीजिए या बसलेस आप ही कीजिए, मतलब लीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ ये कसम खाने की सिलसिला।

क्या बात है, अलका जी और उदित नारायण मिलके ये द्वैत आपको सुनाए हैं, ये कस्में खाने की बातचीत। तो मुकेश जी कह रहा है कि उन्हें तो थोड़ा डर लग रहा है, प्रेम प्यार मोहब्बत में मुकेश थोड़ा चंट है, तो वो कह रहा है और क्या कह रहा है, चलिए हम आपको सुनाते हैं।

मुझे रात दिन ये ख्याल है, फिल्म उमर कैद में से निकाले हैं निकतिन इन सस्तक का ये गीत इकबाल कुरैशी के साज पर हमने पेश किए उफरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, लेकिन मैं थी मुकेश जी के बाद हम ये गीत और आपको सुनाएंगे। जी हाँ, विज्ञापन से पहले चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

फन होम टेल हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 907 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और ओल्ड इन गोल्ड जो गीत होता है उसमें स्वाद बहुत ज्यादा है। हम चलते हैं एक गीत के ओर जिस फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिने तमन का एक सुपरहिट फिल्म है जो आप इस गीत को जानते होंगे दोस्तों।

और दो लफ्जों की है ये कहानी। मूवी के नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिने तमन इस फिल्म में काम किया है। गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों। और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा। आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुना है। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दोस्तों, ओल्ड इन गोल्ड का प्रोग्राम यहाँ से हम चलाते हैं हमारे, तो यहाँ पर क्या है आओ सुना जाए ओल्ड एज गोल्ड का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बाहर प्रोग्राम है।

जन्म ओल्ड एंड गोल्ड कांजोंग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारो हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एंड महमूद इन गोवा अथवा सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहौर के माध्यम से और यहां से सुनाते हैं।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नतगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम मस्त महीना नैतिक लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए हम चाहते हैं माइती मुकेश की ओर की

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेल का क्लियर दुपट्टा। आओ सुना जाए।

0: और उजले उजले बाल लाल टोपी।
1: दोस्तों मिली जुली गीत आप लोग को हम सुनाएंगे, आओ सुना जाए।

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ। और कौन आएंगे? महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग, हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों तेरे नाम लिया और क्या किया, क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया, सुना जाए।

तू पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे। तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

रे अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन नई खतीन तख्त का ये फिल्म है दोस्तों, और ये मौफी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है कि जोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सूरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं, आओ सुना जाए।

विस्कनातीना मुनिम का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है सौतन दोस्तों, सौतिनिया सौतन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू के ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है, नवीन सरवन का म्यूजिक है।

ये दिल आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं, कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैर खैन अख्तिनवेर, लोग बोलते हैं एक बैर खैन अख्तिनवेर, और एकवा बोले है एक वोर्थ अख्तिन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नई खती हों नई हनन जीफन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए। और जतन के बाद हम चलते हैं, क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है? काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जांजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी के नाम है साजन, और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

और दत्ते करने को ये सॉन्ग थे। और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नीघत का सोन, और वो कुछ और थे, और ओल्ड इन गोल्ड और कुछ है दोस्तों, और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार नीघत का जोंग, और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है साजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और मैं दी मुगेश का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं दीवाना मस्ताना, और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइकी मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आम सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मोफी के नाम है निकटी द्री एंसेस्टर का पदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर।

अरे दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1999 तक का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौशाद के साथ में हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

Movie के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग के जेते दूर कोई गाए धुनिए।

और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मन और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का, ये सॉन्ग सुपरहिट फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

ये शिपरजों थे सात हजार किशोर दादा, क्या सुनाते हैं एक दुएत के ओर हम लोग आज चला जाएं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिक लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

कुमार और शहरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शहरा मानू बहुत छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बीत जाएगा और 17 बस बाद में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।
1: ऐसे भी हो, वैसे भी हो,

0: नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है। सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंद जसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। तो यहां पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर और किशोर दादा आपको क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, इट्स ही मूवी फिल्म है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, माइती मुकेश का ये सॉन्ग।

और तुमसे ओ हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श 1967 के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

0: परवर का ये सॉन्ग है और आप जानते हैं रफी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: There is no need for panic. They are crossing some highways. Please remain where you are. And for your entertainment, Miss Colette will give you an exciting cabaret number.

और अब नाराज खुदा कह रे करे दोस्तों क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है मूफी का नाम है नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।

0: अरे शाह जय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंगा और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता है।
1: जी हाँ सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी हीरो से आप सुनेंगे डिंग डोंग बेबी सिंग सॉन्ग।

0: अभी आप सुन रहे थे डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग। खास है वो लोग जो वक्त आने पे वक्त दिया करते हैं। एक बहुत से सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, शबीर कुमार और लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी बेताब से हम पेश करते हैं।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

अभी आप सुन रहे थे जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी बेताब से हमने पेश किए हैं। रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। सोनी मेरी सोनी सोनी अनवर के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं।

यहाँ पर सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सोनी महिवाल से अनवर और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे सोनी मेरी सोनी सोनी हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। फ्रॉम द मूवी सड़क से हम पेश करते हैं।

फन होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए फिर से प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं सुनने वालों, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम बहुत खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों।

सुनने वालों, समय के अनुसार शुभ शकुन के सपने भी होते हैं और अशुभ शकुन के सपने भी होते हैं। शुभ शकुन के सपन, दिन में हिरण वानर को देखना, दोपहर में नीलकंठ मुर्गे को देखना, रात्रि में उल्लू और पिंगला को देखना, परंतु स्त्रियों के लिए इसकी विपरीत है। यात्रा शगुन ही शुभ, राजा के दर्शन के लिए गृह प्रवेश के समय, पर्वत पर चढ़ते समय, वन प्रवेश समय, नदी पार करते समय। क्रिया दीप शगुन शुभ शकुन है यदि वाम या दक्षिण दिशा में जाएं, विनाश है यदि आगे या पीछे जाएं। द्वार नामक शेष शकुन, यदि बाएं भाग वाला शकुन बाएं और दाएं भाग वाले शकुन दाएं स्थित होकर शांत भाव से शब्द या चेष्टा करें। अनेक क्रिया करते शकुन, अतिक्रमण करके चला जाए बंधन और घात से भय।

जब कोई जल पीता दिखाई दे तो वर्षा होती है, जब कोई चरवाहा घास चराता गाय को दिखे तो चोरी का भय होता है, जब हम किसी को मांस खाता देखते हैं तो शरीर में चोट लगती है, जब हम किसी को अन्न खाता देखते हैं तो प्रेमी से मिलन होता है। सुनने वालों, वृक्ष के ऊपर मध्य जड़ में शकुन, जब हम किसी वृक्ष के ऊपर किसी पक्षी या किसी जानवर को देखते हैं तो उसके भी अच्छे शगुन होते हैं। जैसे जब हम किसी वृक्ष के नीचे हाथी को बैठता देखते हैं तो अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, घोड़े को भी जब हम बैठा देखते हैं तब भी अच्छा शगुन होता है। रथ पर चढ़कर किसी का आगमन हो, जब हम किसी को देखें कि कोई रथ में चढ़कर आ रहा है तो उसका भी अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, किसी लंबी वस्तु कमल पत्र पर चौखड़ पर शकुन, नौका और पालकी में चढ़कर किसी का आगमन, जब हम किसी को नाव में बैठा देखते हैं और कोई पालकी में किसी को लेके जा रहा है या किसी की डोली जाती पालकी में तो वो भी अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, चंद्र नाड़ी में शकुन, यात्रा करने वाली या वाले का गमन करते समय यदि बायां स्वर चल रहा हो तो उसके बाएं भाग में जितने भी शकुन होते हैं सभी उत्तम फल देते हैं। सूर्य नाड़ी में शकुन, यात्रा करने वाली या करने वाला गमन के समय यदि दायां स्वर चल रहा हो तो उसके दाएं भाग में जितने भी शकुन होते हैं सभी उत्तम फल देते हैं। यदि रिक्ता स्वर चल रहे हो तो बाईं और दाईं दोनों ओर होने वाले शकुन निष्फल होते हैं। शुभ

शुभ स्थान में शुभ शकुन सुनने वालों, जैसा स्थान होगा उसके प्रभाव से भी शकुन अच्छे या बुरे होते हैं। ऊंचे मनोहर स्थान में, पवित्र भूमि में, जल भरे सरोवर के निकट, गोबर से लिपी जगह में, धान के खेत में, हरी घास के ऊपर, राजमहल, घुड़साल, गौशाला, मंदिर, धर्मस्थल, आहार करते समय। सुनने वालों, अगर ये सब चीज़ें हमें कहीं पे भी दिखें तो उसका मतलब है कि शुभ शकुन के आसार दिखाई देते हैं। सुनने वालों, अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं, तो गीत के बाद हम दोबारा आपसे मिलेंगे।

शुभ स्थान में शुभ शकुन अगर होते हैं सुनने वालों, तो अशुभ स्थान पर अशुभ शकुन भी दिखाई देते हैं। जैसे ऊंचे स्थान में मरे हुए शरीर पर सूली पर, शमशान में गधे के ऊपर, भैंसे के ऊपर, सुअर और ऊंट के ऊपर, सर्प की बामी पर, बामी में जहाँ पर सर्प सांप रहते हैं, सूखे पेड़ पर, उखड़े वृक्ष पर, जलती लकड़ियों पर, पत्थरों के ढेर पर, हड्डियाँ या मल के ढेर पर, शकुन रोगी बूढ़ा दीन हो। ये जितनी भी बातें हैं सुनने वालों, अगर ये सब दिखाई दें तो समझो अशुभ शकुन है।

दाई बाई ओर के शकुन, जो दक्षिण अंक को स्पर्श करे वह शकुन सफलता देते हैं। जो शकुन पुरुष के लिए दाहिनी और शुभ होते हैं वही स्त्री के लिए बाई ओर शुभ होते हैं। स्त्री संज्ञा बाई, पुरुष संज्ञा दाई। स्त्री संग बाई ओर शुभ होता है। पौध की पिंगला, कोकला, छिपकली, सुकरी, छुचुंदर, ये सब जानवरों के नाम हैं। पुरुष संज्ञा दाई ओर शुभ, कौआ, कबूतर, तीतर, हंस। बाई दाई गति के शकुन, इनकी बाई ओर गति श्रेष्ठ। श्रीखंड, खजूरी, रूरू, बंदर, श्रीकंठ, चाश, ये सब जानवरों के नाम हैं सुनने वालों।

नाम लेना, सुनना, देखना शुभ। सुनने वालों, कई चीज़ों के नाम लेना भी शुभ होता है और उन्हें सुनना भी शुभ होता है और देखना तो और भी शुभ होता है। जैसे बकरी, नेवला, इनकी ध्वनि शुभ होती है और इनके दर्शन भी शुभ होते हैं सुनने वालों। जैसे रीच, वानर, लेकिन नाम लेना अशुभ। रीछ और वानर का नाम लेना अशुभ समझा जाता है लेकिन इनको देखना शुभ समझा जाता है सुनने वालों। विषम संख्यक दक्षिण में शुभ, नेवले, पक्षी, हिरण। बिल में निवास करने वाले, यानी जो लोग बिल में मिट्टी के नीचे घर बना के रहते हैं, वह यदि बाई और होकर गमन करे तो शुभ है। गमन से पहले बात के शकुन, जो शकुन गमन से पहले होता है वही शकुन गमन के बाद हो तो शत्रु का भय होता है।

सुनने वालों, अभी मैंने आपको बताया कि जो जानवर बिल में रहते हैं और जो जिनका नाम लेना और सुनना भी शुभ समझा जाता है और उनको देखना भी शुभ समझा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दिन रात में विचरते शकुन, जो दिन में विचरते हैं यानी कि जो चीज़ें हमें दिन में दिखाई देती हैं, बगुला, बंजुल, कौआ, चकवाक, कोयल, मोर, गिद्ध, पौधकी, वानर, कपीजल, तोता, शिखरा, बटेर, गधा, ये सब जानवर भी हैं और पक्षी भी हैं, उनके नाम हैं सुनने वालों। और जो रात में विचरते हैं, जो रात में दिखाई देते हैं, वो है पेचक, घुघू, घुघू मीन्स उल्लू, छिपकली, चमचेड़ी, लोमड़ी, खरगोश। जो दिन रात्रि में विचरते हैं, जो दिन और रात दोनों में दिखाई देते हैं सुनने वालों, वो है मनुष्य, नेवला, बिल्ली, बकरी, गाय, मृग, सिंह, हाथी, सर्प, कोयल, सारवत, हंस और सुअर। विभिन्न दिशाओं में मिलना शुभ। पूर्व में घोड़ा, सफ़ेद वस्तु। दक्षिण में मांस, शव। पश्चिम में कन्या और दरी। उत्तर में ब्राह्मण, साधु और गाय। सुनने वालों, यानी विभिन्न दिशाओं में जो हमसे मिलते हैं वो भी शुभ माने जाते हैं। जैसे वह पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, हमें घोड़ा मिल जाए, सफ़ेद वस्तु कोई देखने को मिल जाए तो वो शुभ मानी जाती है। और दक्षिण की तरफ जाएं, अगर मांस और शव मिल जाए वो भी शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर जाएं, कोई कन्या मिल जाए, दरी मीन्स जैसे एक गलीचा होता है, कारपेट, वैसे एक दरी होती है, अगर वो दिखाई दे, कोई सिर पे उठा के लेके जा रहा है, तो वो भी शुभ मानी जाती है सुनने वालों। और अगर उत्तर दिशा में जाएं, अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई साधु मिल जाए और गाय मिल जाए, वो भी शुभ मानी जाती है सुनने वालों।

हर दिल को खुशी से भरपूर कर देना, बस इतनी रहमत मेरे हजूर कर देना। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं।

रामचरितमानस तथा शकुन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिन शकुनों का वर्णन विभिन्न अवसरों पर किया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह के अवसर पर अयोध्या से बारात के प्रस्थान के समय जो शुभ शकुन प्रकट हुए वो इस तरह से हैं। सुनने वालों, बनई न बर्तन बानी बर्ता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता, चारा चापू बाम देसी ले, मनहु सकल मगल कही दे। तो जब ये शगुन हुआ तो उनको नीलकंठ गायें दिखाई दी रस्ते में। सुनने वालों, दहिन काग सुख सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। तो इसका उनको रस्ते में न्योला में नेवला दिखाई दिया। सुनने वालों, सनुकूल वह त्रिविधि बियारी, इस शब्द का अर्थ है कि उनको गोद में एक औरत बालक लेते हुए दिखाई दी। सगर सोबल अवकार नारी, जल से पूरित घड़ा देती एक स्त्री दिखाई दी। लोवा फेर दर्सु दिखावा, एक श्यामा पक्षी दिखाई दिया। सुरभि सन्मुख सीसु पियावा, गाय बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दी। मृगमाला फिर दाहिनी आई, इस शब्द का अर्थ है फिर उनको एक मृग हिरणों का झुंड दिखाई दिया। मंगल गंजनु दीनी दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम विशी, क्षेमकारी पक्षी, एक पक्षी का नाम है। सुनने वालों, रास्ते में जब बारात जा रही थी राम जी की तो उनमें भी उसमें तब उनको क्षेमकारी ये पक्षी दिखाई दिया। स्वामवाक सुत्रु देखी, सन्मुख आयुधी अरुमीना, फिर उनको एक औरत दही लेती जाती हुई और एक औरत मछली लेके जाती हुई दिखाई दी। कर पुस्तक दो वीप प्रवीणा।

रामचंद्र जी के राज तिलक के अवसर पर प्रकट शकुन। सुनने वालों, जब रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था तब काफ़ी सारे शकुन दिखाई दिए, जैसे सुनत राम अभिषेक सुहावा। जब राज तिलक हुआ बजे घर घर अवध बधावा, तो अवधपुरी में शहनाई बजी। राम सिए तनु शकुन जमाए, फर कहे मंगल अंग सुहाए, यानी कि उनके शरीर के अंग फड़कने लगे। भरत मिलन का सूचक शकुन, जब भरत से मिलन हुआ तो उसके भी सूचक हैं। पुलक सब प्रेम परस्पर कह ही, भारत आगमन सूचक अहि। भये बहुत दिन अति बकेसरी, शकुन प्रीत भेंटे प्रिय केरी। करदूषण के लिए अंगहीन सूप नखा अमंगल की सूचक थी।

श्याम घटा देखत नभकेरी, ताहम वासम धनु मनु उमेरी। यानी कि पंचवटी में शुभ खादि आगे कर लीती, अशुभ रूप ज्योति नशा हीनी। के सूपनखा ने जो कुछ किया वो सब कुछ अविनाश का संकेत था सुनने वालों। राम ने सुवेल पर्वत शिविर से रावण का अभिमान चूर करने के लिए एक बाण छोड़कर लंका में पर्वत शिखर पर नृत्यशाला में बैठे रावण का छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल गिरा दिए, जिसे कोई नहीं जान सका। कमस न भूमि न करत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कोई नैन न देखा। सोची सब निज हृदय विचारी, अशकुन भयो रावण ही भारी।

रावण के हाथ से हथियार छूट पड़ते हैं, रथ से योद्धा गिरते हैं, हाथी घोड़े भयंकर शब्द करते हुए साथ छोड़कर भागते हैं, गीदड़ गधे गिद्ध भयानक शब्द करने लगते हैं, कुत्ते रोने लगते हैं, उल्लू पक्षी भयानक बोली बोलते हैं।

दूसरी बार रावण जब युद्ध के लिए प्रस्थान करता है तो अशकुन होते हैं जिन्हें रावण ना मानकर युद्ध के बाजे बजाने का आदेश देता है। चलत हो ही तो ही अशुभ भयंकर, बैठ ही गृद उड़ ही शिरन पर, भयाऊ काल वश का छू न माना, कहसी बजावहु युद्ध निशाना। राम रावण युद्ध का संवाद त्रिजटा से सुनकर सीता ने मन में जब राम वियोग का दुख हुआ तो यह शुभ शकुन हुआ। जब अति भयउ विहर अर्धाहु, फरेक्यु वाम नैन अरु बाहु, शकुन विचार धरे और धीरा, अब मिली हृदय कृपालु रघुवीरा। सुनने वालों, अब मैं गीत की ओर बढ़ती हूँ और गीत के बाद फिर आगे का वृत्तांत मैं आपको सुनाती हूँ।

सुनने वालों, अभी मैंने आपको बताया कि जब रावण युद्ध के लिए जाने लगा तो बहुत सारे अशकुन हुए और उनको रावण ना मानकर युद्ध के लिए चला गया और उसने बाजे बजाने का आदेश दिया। तो फिर त्रिजटा जी से बात सुनकर सीता माता इतनी खुश हुई और राम वियोग का दुख वह भूल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। राम वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने पर उनके आगमन की कोई सूचना ना मिलने से सभी चिंतित थे। उस समय भरत को शुभ शकुन प्रकट हुए। भरत नयन भुज दक्षिणा फर कही बरही बार, जानी शकुन मन हर्ष अति जागो करण विचार।

छींक विचार। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि जब कोई छींकता है तो उसका उसको बुरा भी माना जाता है, शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। वो दोनों कारणों से सही भी है और नहीं भी सही। एक नाक दो छींक, काम बने सब ठीक। छींक प्रायः सभी दिशाओं की खराब होती है। अपनी छींक महाअशुभ होती है। अपनी छींक राम बन गए हूँ, सीता हरण तुरंत ही भय हूँ। गौ की छींक मरण का संकेत देती है। कोशिश करने पर भी यदि छींक ना रुके तो मनुष्य जिस काम के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य होगा। फिर भी सम्मुख छींक लड़ाई भरावे, छींक दाहनी द्रव्य विनाशे। पीठ पाछले सुख अभिलाषे, बाई छींक धन सदा प्रकाशे। ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए भयकारी।

शराब संघनी, पेनस सर्दी से होने वाली छींक, बच्चे और बूढ़े की छींक तथा हट से छींकना निष्फल होता है। कन्या, विधवा, धोबीन, वैश्या, शूद्र की छींक विशेष अशुभ होती है। आसान, शयन, शौच, दान, भोजन, औषधि सेवन, विद्यारम और बीज बोने के समय, युद्ध या विवाह में जाते समय छींक हो तो शुभ फलदायक होती है। छींकत नाइए, छींकत खाइए, छींकत जाइए सो, छींकत पर द्वारे ना जाइए चाहे लाख गरज भी हो। इसका मतलब है सुनने वालों कि नहाते हुए छींक आ जाए, खाते हुए छींक आ जाए, सोते हुए छींक आ जाए तो सही है, पर अगर किसी के द्वार पर जाए छींक आ जाए और लाख गरज हो तब भी नहीं जाना चाहिए।

सुनने वालों, जब हम सबको छींक आती है तो उसका फल भी मिलता है, और छींक आने पर कई कार्य हैं जो हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। गमन करना, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कार्य में बाधा आती है। एक से अधिक छींक, कार्य सरलता से संपन्न होता है पर वासी के बाईं ओर अशुभ मानी जाती है। कार्य करने जाना, खरीद में लाभ, धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ तो उसमें विघ्न होता है। व्यवसायिक कार्य, व्यापार वृद्धि होती है। नए मकान में प्रवेश स्थगित कर देना चाहिए। मरीज द्वारा दवा लेना, शीघ्र ठीक हो जाता है।

तुम अपनी जड़ों को नीचे पहुंचा दो, प्रकृति तुम्हारे फूलों को आकाश में पहुंचा देगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: मिल पा रहा है, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए अपने की श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। हमारे साथ कार्यक्रम में सहयोग देने वाले हैं श्रीमती शांता जी और भाई राजेंद्र जी। तो भाई राजेंद्र जी, आप तो कुनप के आगे बैठे हुए हैं और शांता जी के लिए बटन दबा दो ताकि वो भी कुछ कह सके।
1: चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, समंदर अधूरा है किनारे के बिना, फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी अधूरा नहीं है आप जैसे प्यारे प्यारे सुनने वालों के बिना। तो प्यारे आत्माओं, फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की सुनने वालों को सेविका शांता की श्रद्धा से राम राम प्रणाम स्वीकार होवे। आप जैसे सुन रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है सेवक संजय जी और साथ में राजेंद्र जी, और यहाँ से हम मिलजुल कर अपना प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश फाहन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा के आकाश में ला रही हूँ हर सप्ताह की तरह। ये आशा उम्मीद है कि आपको ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम आपको पसंद आए और आप हमारे साथ प्रेम और प्यार से साथ में बने रहे। तो संजय जी,
0: अति सुंदर रूप से और जाकर के शांता जी अपना संदेश को हम सबको सुनाए। राजेंद्र जी, आप भी कुछ कह दो तो हम सब आगे बढ़े।
2: भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से प्यार नहीं।
0: कोई इस मौसम और बैठे हुए सोचते होंगे कैसा और ये मौसम है, कैसा ये दिन है, आज हम सब ये कार्यक्रम लेकर क्या सुनाने वाले हैं। अभी हम सब कार्यक्रम के विषय की ओर बढ़ेंगे, पर जो घर पे बैठे हुए उदास बैठे हुए हैं तो उनके लिए पहले एक सुंदर सा और गीत को सुनाया जाए।
2: जी जरूर, उन लोगों के लिए आज मौसम तो अच्छा है लेकिन बारिश है, तो उस बारिश भरी मौसम के साथ साथ एक अगर बहुत अच्छा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार भजन सब सुनेंगे तो मौसम और भी सुहावना हो जाएगा। तो लीजिए, अब सुनिए

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों सुनने वालों, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर, और ज्योति का प्रकाश हर सप्ताह कुछ ना कुछ और संदेश लेकर आपके लिए उपस्थित रहते हैं। हमारा विषय आज का क्या है, अभी उसके ओर बढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले कार्यक्रम को सुनकर लोग और ये प्रश्न एक होता तो मैं शायद सोचता कि भाई चलो इसे कहीं और प्रोग्राम में और पूछ लेंगे, पर और लोग ये प्रश्न किए राजेंद्र जी, लोग को जिज्ञासा है जो आपने पिछले सप्ताह बताए कुंभ मेला के बारे में, क्योंकि वो एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में आप बताएं और हम सब के पास ये प्रश्न हो गए कि लोग ये कहे हमसे कि भाई कम से कम कुछ और उसके बारे में बताइए, और लोग उसके बारे में कुछ सुनना चाहते हो। राजेंद्र जी आपसे यही प्रश्न है कि कुछ और हम सबके ये कुंभ मेला के बारे में व्यतीत करें।
1: फाहुन रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपने कुंभ मेले के बारे में जानने की दोबारा से जिज्ञासा जताई, और इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते इसमें कुछ चेंजिंग रहा, तो थोड़ा सा शाही स्नान कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, थोड़ा लेट रहेगा, लेकिन अभी जो 15 मार्च से लेके और 27 अप्रैल तक मनाया जाएगा, तो कुंभ मेला की कुछ पौराणिक समय में कुछ बूंदें अमृत की हरिद्वार में गिर गई थी समुद्र मंथन के समय में, इसी कारण हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में है, तो इसलिए ज़्यादा करके चर्चा हरिद्वार की रखेंगे। 12 वर्षों में मनाए जाने वाला कुंभ का हरिद्वार एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार महाकुंभ भारतीय जनमानस की चेतना का प्रतीक भी है। ऐसी मान्यता है कि हरिद्वार कुंभ मेले के स्नान से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है, और पंचांग के अनुसार कुंभ की घोषणा की जाती है। यही कारण है कि यहाँ कुछ कुंभ के आयोजन के समय करीब 3 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय व विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहता है, और अब कुंभ भारत ही नहीं विदेशी सैलानियों का भी आकर्षण बन चुका है। कुंभ मेले में आने वाले लोगों की विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न वेशभूषाएं, विभिन्न संप्रदाय, लेकिन अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी एक आधार साम्य सत्य की खोज, इतने विभिन्न मार्गों से ये कुंभ मेला है। पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा मेला, भारत के हृदय में झांकने का एक झरोखा कुंभ मेला आनंद का उत्सव है। समस्त दुखों को भुलाकर सभी प्रकार के लोग और साधु संत बिना किसी निमंत्रण के कुंभ मेला के लिए एकत्रित होते हैं। कुंभ मेला भारत का राष्ट्रीय समागम है। कुंभ एक उच्चतम शब्द है। यहाँ देश विदेशों से अनेक लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। जिन्होंने भारत को जानना है या समझना है, वो कुंभ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सही अर्थों में कुंभ और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसको समझने के लिए कुंभ सबसे अच्छा माध्यम है। कुछ एक उत्सव है, कुंभ एक उत्सव भी है, और चेतना का विस्तार का कुंभ एक महायज्ञ भी है। जीव और जगत के कल्याण का कुंभ मेला 4 पवित्र नदियों के तट पर होता है। पूर्व में गंगा नदी के तट पर प्रयाग में, पश्चिम में छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, उत्तर में गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में, और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर नासिक में। कुंभ मेला औसतन 3 वर्ष में एक जगह होता है, जिसमें कि 12 वर्षों में एक जगह होता है। वर्तमान में 13 अखाड़े हैं। ये सब अखाड़े अपने आप को आदि शंकराचार्य से संबंधित मानते हैं। बिना किसी प्रचार प्रसार के सब एक ही स्थान पर पहुंच जाना अपने आप में महानता है। एक ही शक्ति है जो कि संपूर्ण सृष्टि को चला रही है, और वो विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। बस संजय जी, अब कुंभ मेला की जानकारी संक्षिप्त में हमने दी, अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, नीदरलैंड के और सूरीनाम के लोगों को।
0: ये अच्छा संदेश आपने दिए भाई राजेंद्र जी कि कुंभ मेला पर, हमने तो अभी तक कभी कुंभ मेला गया नहीं और ये बात सुन करके बस इच्छा हो रहा है। पर हमारे साथ में बैठे हुए शांता जी, शांता जी जो कि जाकर कुंभ मेला घूम आए हैं, कौन सा साल में गए थे ये कुंभ मेला?
2: 2003 में हम गए थे।
0: आप गए तो वहाँ कैसा लगा और कैसा है, जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा कि एक महा उत्सव तथा ऐसा सुंदर रूप से और वो यानी कि एक रखा जाता है।
2: एकदम आप सही कह रहे हैं, राजेंद्र जी जैसे कहा बिल्कुल वैसे ही है कि कुंभ मेला, वो नाम शब्द कहता है कि मेला है, तो वो वाकई में मेला है।
0: दोस्तों ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और हम सब कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश आपके लिए रख रहे हैं। और राजेंद्र जी आज का विषय जो कि रखा गया है कि 14 प्रकार के मृत्यु। दोस्तों 14 प्रकार के मृत्यु होता है और कभी आप इसके बारे में शायद सुने भी होंगे, तो आज हम सब उसी के बारे में एक दूसरे से और यानी कि वार्तालाप करेंगे तथा उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। 14 प्रकार के मृत्यु, तो अब इसके बारे में आप सुनकर डरना नहीं, क्योंकि डरने से हम सब इसके कार्यक्रम नहीं बनाया जाता उसके लिए। पर इसमें जो ऐसा हमारा भाषा है ना, हमारा भाषा इतना सुंदर रूप से है कि अगर जब हम कहीं मोहन के बलाए और मोहन ने और जवाब नहीं दिया कि मोहन कहाँ हो, मोहन पहला बार में जवाब नहीं दिया तो मोहन के दूसरा बार में हम और जोर से चिल्ला कर कहते कि मोहन किधर हो, और जब मोहन दूसरा बार भी कोई जवाब नहीं देता तो हम क्या कहते हैं कि मोहन किधर मर गया। तो मोहन चाहे जहां भी हो, हालांकि मरने के बाद यहां नहीं होता है, पर मोहन जरूर जवाब दे देते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आज हम सब 14 मृत्यु उसके बारे में बातचीत करेंगे। राजेंद्र जी कुछ और उसके बारे में हम सबके सुनाने वाले हैं।
1: हाँ, जैसा कि अभी संजय जी ने बताया कि 14 मृत्यु तुल्य, 14 प्रकार के व्यक्ति मृत्यु तुल्य बताए गए हैं, मृत्यु के समान है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ऐसे व्यक्तियों से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य व्यक्ति हैं उनसे, उनके साथ व्यवहार नहीं बनाना चाहिए। तो जैसे कि कैसा है इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। जब श्री राम और रावण युद्ध चल रहा था तब अंगद रावण को बोला, तू तो मरा हुआ है।
0: अंगद ने रावण से बोला, यानी कि जब वो दूत बन करके गए थे ना, तो वहां उनसे कहा कि तू तो मरा हुआ है,
1: तुझे मारने से क्या फायदा, तू तो पहले ही मरा हुआ है। तो रावण बोला, मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे? तो अंगद बोला, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लुहार का भाता भी लेता है। भाता मतलब
0: जो फिल्म में देखते है ना, जो लुहार लोग ऐसे फूकना मारता है।
1: हाँ। वो भी सांस लेता है। तब अंगद ने 14 प्रकार की मृत्यु बतलाई, मृत्यु समान जो व्यक्ति होते हैं 14 प्रकार के, तब उन्होंने वो बताई। सो अंगद के द्वारा बताई गई ये 14 मृत्यु के दौर, ये बातें आज के दौर में भी लागू होती है।
0: तो इसके बारे में हम सब अब जरूर आगे बढ़ेंगे राजेंद्र जी, क्योंकि 14 प्रकार के यानी कि हम सभी अभी सुनेंगे कि उसमें से कितने हम सब के कोई अवस्वभाव होगा, तो शायद हम सब उन बातों को सुन करके और हम सब अपने आप के और यानी कि उसमें कुछ ना कुछ और यानी कि बदल कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को बदलने नहीं चाहते। पर हम जब अपने आप में कोई गलतियां देखे तो जरूर हम उसे खुद को और बदलने की कोशिश करें। दोस्तों ये 14 मृत्यु आप बिल्कुल उसे पे नहीं जाना, क्योंकि जो एक होता है देहांत, जो 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है हमारा, वायु आकाश अग्नि और जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों का शरीर जो काया हमारे बना हुआ है, और इसमें से जब जीव उड़ जाता है तो उसे कहते हैं देहांत, और ये जो हम सब अभी बात करने वाले हैं, तो ये है 14 प्रकार के व्यतीत मृत्यु तुल्य, उसके बारे में बातचीत होगा। राजेंद्र जी जो कि इस समय, और मैं देख रहा हूँ शांता जी तैयार है कुछ कहने के लिए, तो उनका
2: जी जी जी अभी संजय जी ने कहा मृत्यु के बारे में ना, तो मृत्यु के बारे में नीदरलैंड्स में कुछ कह देती हूँ कि व्हाट इज द डेथ। द डेथ इज एन ऑन ओम केयर बार टू स्टैंड वर बाय एन फोर हेन लेवेंड ऑर्गेनिज्म नीट मेर ग्रोइट एन हेन स्टॉफवेसलिंग ऑफ अंदर एक्टिव लेवेंस फंक्शन मेर हैव, दैट इज द डेथ दैट से है।
0: तो ये है देहांत, जिसे हम कहते हैं शांता जी,
2: जी
0: कि जबकि शरीर में से जो शरीर हमारा होता है ना, तो वो जैसे कि एक पिंजरा में एक पंछी होते हैं, और कहावत है कि जब पंछी पिंजरा से उड़ गया। तो राजेंद्र जी कौन सा गीत चलाने वाले हैं आप?

0: दोस्तों ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और विषय जो कि 14 प्रकार के मृत्यु, मृत्यु तुल्य कहा जाता है। और जैसे कि आप अभी राजेंद्र द्वारा उनसे सुने कि अंगद द्वारा रावण को बतलाई गई ये बात आज के दौरान में भी, यदि किसी अव्यक्ति में इन 14 दुर्गुणों में से एक और दुर्गुण भी आ जाता है तो वे मृत्यु समान हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम सब 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे भाई रूपचंद जी ने और फोन करके और कहने लगे कि भाई अति सुंदर लग रहा है पर अभी तो कार्यक्रम प्रारंभ ही नहीं हुआ है। पहला जो कि काम वश वाला, राजेंद्र जी आप ही सुनाइए कि पहला मृत्यु तुल्य क्या है।
1: पहला मृत्यु तुल्य है जो संसार के भोगों में उलझा हुआ है वह मृत समान है, जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में ही लीन रहता है।
0: यानी कि जो अपने लिए सोच रहे कि अपने लिए जी रहे हैं और अपना मनमाजी कर रहे हैं तो वो भी मृत्यु तुल्य में गणित है। जो दूसरा होता है भाई राजेंद्र जी, उसके बारे में अगर आप कुछ कह सके।
1: हाँ, जो वाम मार्गी है, जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले,
0: यानी तेख खस्ता उल्टा, जो कि जो हमें
1: जैसे
0: हमें
1: लोग जब दक्षिण से चलते हैं, हाँ, उल्टा तो वो उल्टा चले बाम से
0: अपने मनमानी भी।
1: हाँ, लोग जैसे राइट से चलते तो वो लेफ्ट से चलता है।
0: जैसे सरकार ने हमें कहा कि हमें ये नहीं करना है वो नहीं करना तो वो वही करेंगे।
1: हाँ, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता है,
0: यानी कि नियमों को नहीं देखते हैं। हाँ, कोई प्रकार के,
1: हाँ, सकारात्मक एक होती है, सकारात्मक मतलब अच्छी सोच, एक होती है नकारात्मकता जो उल्टी सोच। नियमों परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले

0: बच्चे होते हैं,
1: वो तो बात सही है, पर बच्चे के नहीं है, नहीं,
0: पर ये
1: सभी के लिए है,
0: सभी, हाँ,
1: सभी के लिए है,
0: और खास करके ये हम सभी में कुछ ना कुछ, क्योंकि हम अपना गलती नहीं देख पाते।
1: हाँ, हम तो कभी कभी अपन मनमानी कर लेते हैं,
0: मनमानी करते रहते हैं और अपना गलती नहीं कर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम राजेंद्र जी, दूसरा जो कि वाम मार्गी, उसके बारे में जो आप बताए, पर तीसरा क्या है राजेंद्र जी?
2: तीसरा व्यक्ति जो कंजूस है,
0: ले
2: अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य में आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकिचाता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत्यु समान ही है।
0: यानी कि कंजूस, हम लोगों ने सुने, देखो सत्संग में एक बार मैंने भी सुना था कि तीन प्रकार के होते, एक चूस, एक कंजूस और तीसरा मक्खी चूस।
2: हाँ तो मक्खी चूस मतलब जो सबसे ज्यादा कंजूस।
0: हाँ, तो ये लोग भी, और यानी कि हम सबको उतना कंजूसी भी नहीं और रखना रहना चाहिए, ताकि हम सब ये जो 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य बताया गया है उसमें अपना पहचान देखे, और हम उससे भी, यानी कि जब हम अपने आप में देखेंगे उसे, तो हम अपने आप को बदल भी सकेंगे। और भाई राजेंद्र जी, अगर जब ज्यादा नहीं पूछूं तो चौथा क्या है?
2: हाँ, जैसे संजय जी आपने मक्खी चूस का जिक्र किया है, तो हम चाहे कि इसको आपको क्लियर कर दे कि मक्खी चूस का मतलब क्या होता है, कितना बड़ा कंजूस होता है मक्खी चूस,
0: बता दो भाई।
2: जैसे कि आप एक गिलास में दूध पी रहे हैं,
0: हाँ जी,
2: आप नहीं, जो मक्खी चूस व्यक्ति है वो, और दूध में मक्खी गिर जाए तो वो सोचता है कि दूध में मक्खी गिर गई, तो मक्खी को उठा के उठाएगा तो उसमें कुछ दूध लग गया, तो उसको भी चूस लेता है और फिर मक्खी फेंकता है तो उसको मक्खी चूस बोलते हैं।
0: सही बात, सही। शांता जी, इस पे आपको कुछ कहना है?
1: नहीं, राजेंद्र जो कहा वो सही कहा, उसको
0: सही,
1: उसको मक्खी चूस कहता है।
0: बिल्कुल सही राजेंद्र जी, बस चौथा और सुना दो, ताकि हम सब फिर एक सुंदर सा अर्थ भरी गीत की ओर बढ़ेंगे।
2: जी, चौथा है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मृत ही है, अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है। गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए।
0: और कहने के मतलब ये है राजेंद्र जी कि गरीब को मदद करना चाहिए, और जो ऐसा दरिद्र होते जो औरों के मेंशन दी अंदर नीच खुनन, यानी कि हॉलैंड्स में हम सब कहते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है, और वो भी अति दरिद्र में, यानी कि 14 मृत्यु तुल्य में कहा गया है।
2: हाँ, यहाँ पे गरीबी पैसा से नहीं है, गरीबी गरीबी का यहाँ पे मतलब जो है धन से कम है, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान और साहस से भी है। धन से तो गरीबी दूर की जा सकती है, लेकिन आत्मविश्वास, सम्मान और साहस व्यक्ति का खुद का होना चाहिए।
1: या जैसे जैसे हैथ फर्ट्रॉव हैब हैथ रेस्पेक्ट वार देरिंग, अच्छा, ये सब चीजें ना मिली अपने के ना रहे तो वो भी हैगा अति दरिद्रता।
2: जी,
0: अच्छा संदेश जो हम सबको और राजेंद्र जी और शांता जी सुनाए, तो हम सब एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ेंगे। भाई राजेंद्र जी, गीत का बोल क्या है?
2: गीत का बोल है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।

भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में होता है। ये ध्यान में रख के सुनिए तो एक नया आनंद आएगा।

0: बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राजेंद्र जी, अति अर्थ भरी और सुंदर रूप से ये अनूप जलोता जी हम सबको गीत को और सुनाए। अभी आपने हम सब ये 14 मृत्यु तुल्य के बारे में बता रहे थे और 4 तलक आप बता चुके हैं, पर हमें जिज्ञासा है और सुनने के, राजेंद्र जी तो 5वां क्या है, 5वां मृत्यु तुल्य क्या है?
1: जी जरूर, आपका जिज्ञासा पूरा होगा। 5वां मृत्यु तुल्य है विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है।
0: मूर्ख जो हम लोग बोले सन्नाम में दोंग
1: दन, यस
0: ना, दोंग
1: दुम।
0: हाँ, अभी आप सीख गए।
1: हाँ, जो व्यक्ति दुम रहे।
0: हाँ, दम।
1: हाँ, दम। जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं हो।
0: हाँ जी।
1: जो खुद निर्णय न ले सके,
0: यानी कि बस ले सिंह ना ले पाता। हाँ, नहीं ले पाते
1: जी, यानी हर काम को समझने या निर्णय को लेने की किसी और पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवन होते हुए भी मृत समान ही है। ऐसा व्यक्ति जिंदा होते हुए भी, जीते होते हुए भी मरा ही हुआ है, समझो।
0: ओ हो, बड़ा गंभीर बात बोल दिया आपने। शांता जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: जी
2: हाँ, कहते हैं कि मैं से दी खेन सेल्फ रेस्पेक्टिव ऑफ खेस दी ओक खेन सेल्फ कैनसिव एंड दी खेन एक बसलेसिंग का नेम दिस एंड ओक gelijk aan aan het dode dode persoon.
0: अब लेटरलक शामता जी ऐसा नहीं कहने के कि बिल्कुल दोए परसों दोस्तों,
2: मैं सो इस इट आज जस्ट geen zelf beslissing kan nemen, altijd afhankelijk moet zijn van anderen, dan kan je ook niet vooruit gaan, dan blijf je gewoon op hetzelfde plek zitten, dan moet altijd iemand anders komen om jou naar voren te trekken.
0: दोस्तों, ये ज्योति का प्रकाश है और ज्योति का प्रकाश के लक्ष्य ये है कि हम अपने जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें कम से कम कोई प्रकार से और प्रकाश डाल सके। ये कहावत तो हम जानते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाते है जब परखने वाला नहीं समझाने वाले मिल जाते हैं। तो इस बात पे हमें भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमें हमारे संतों ने बहुत सुंदर रूप से संदेश हम सबको दिए हैं कि ये 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य जो है, 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य है, हमें उसमें अपने आप को पहचाने, और अगर कुछ उसमें जो हम अपने आप को पहचानते हैं तो क्या शायद हम उसे अपने आप को बदलने की कोशिश करें। ज्योति का प्रकाश के ये लक्ष्य नहीं है कि किसी को बदलना है, पर कोई अपना गलती अपने में देख सके तो वो हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, हम जो राजेंद्र जी से पूछ रहा हूँ कि भाई राजेंद्र जी, 5वां तो आपने बड़ा गंभीरता वाला बताया कि जो मूर्ख होता है, जो अपने पसलिसिंग नहीं ले पाते, वो मृत्यु तुल्य के समान है, पर 6वां क्या है?
1: छठवा है संजय जी अजसी। अजसी यानी जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ ही है, जो घर परिवार कुटुंब समाज नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति मृत समान ही होता है।
0: बस जो कोई प्रकार के सम्मान नहीं होता है, यानी कि जो वर्देरिंग नहीं पाता। शांता जी, आपके कभी ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, पर हमारे पास एक टेलीफोन आया था राजेंद्र जी, और टेलीफोन आया था तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो खुशी नहीं हूँ, मेरा भाई बंधु भी मुझसे जलते हैं ना, मुझे और यानी कि कोई प्रकार के सम्मान नहीं देते हैं। तो भाई जी, आपके लिए बस यहाँ भी कुछ लिखा हमारा, क्योंकि हमारा विषय रखने वाले हैं, हम सबके लिए विषय को बना करके और देते हैं, और ये विषय जो कि हमारे संत मुनियों को लिखा हुए है और वो हम सबके लिए खोज खोज करके रखते हैं। इस पे बताया गया है कि भाई केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता है, केवल रक्त यानी कि खून के संबंध से अपना नहीं होता है, प्रेम सहयोग विश्वास श्रेष्ठता, श्रेष्ठता कहते हैं फर्त्रावन को, प्रति आभार सुरक्षा सुहानुभूति और सम्मान ये सारे ऐसा भाव है जो परायों को भी अपना बनाते हैं। तो भाई राजेंद्र जी, जैसे कि आपने छेटवा को सुनाए यानी कि द सस्त मृत्यु तुल्य को और सुनाए, तो क्यों ना हमें सैफंदक को भी सुना दे।
1: जी जरूर, सैफंदक है सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है वह भी मरा हुआ ही है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी जीवन का आनंद से वंचित रह जाता है।
0: अरे ये तो बड़ा समस्या हुआ, ये तो बड़ा समस्या हुआ, क्योंकि जीवित रहते हुए लोग जो ऐसे सोचते हैं कि अरे आज के दिन तो बिता, कैसे बीतेगा कल का दिन, परसों क्या होगा, और ऐसे जीते हैं। ये तो मैं मानती हूँ कि हाँ ऐसा वृतांत तो हम ढेर जानते हैं। भाई राजेंद्र जी, क्यों ना हम इस पे अगर आप जो अवसर दे तो हम कुछ इसके बारे में कहना चाहूंगा। हाँ, क्योंकि पैनल के पीछे तो आप बैठे हुए हैं और आप ही के हाथ में सारा कंट्रोल है, तो इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार ऐसा हुआ राजेंद्र जी
1: जी
0: कि देव इंद्र ने एक और सभा को रचा
1: जी।
0: सभा को रचा और सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, यानी कि सभी को नौता भेजा गया, और वहां पर सभी देवताओं जो कि देव्य रूप धारण कर करके
1: जी
0: और वहां उपस्थित हो गए। सभी पहाड़ों जो भी देव क्वीय रूप धारण कर करके और वहां उपस्थित हुए, सभी श्रेष्ठ नदियों भी देव्य रूप धारण के वहां उपस्थित हुए, सभी युगों भी वहां उपस्थित हुआ। सभी जब उपस्थित हो गया तो कौन आता है सबसे देर से वहां?
1: गणेश जी। कौन आता है बताइए संजय जी।
0: अब देखो राजेंद्र जी को भी नहीं पता था इस बात का। देखो वो वृतांत ऐसे यानी कि बताया गया कि वहां सबसे देर से कौन युग चल रहा है इस समय?
1: कलयुग।
0: और कलयुग आता है तो सबसे देर से आता है, और सबसे देर से वो और सभा में आकर के सबसे पीछे जाकर बैठ गए। सभी देवताओं ने एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे, कहने लगे कि समय इन्हीं का चल रहा है और आया भी तो देर से, और देर से आकर के जाकर के सबसे पाछे बैठे। तो सभी एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए जाते हैं कलयुग के पास, और कलयुग से ये प्रश्न रखते हैं कि भाई समय तो आपका चल रहा है और आप आए भी तो, और आकर के सबसे पीछे क्यों बैठे? तो कलयुग कहते कि मेरा तो दो बात है, मैं जो अपने यानी कि जो प्रेमी होते हैं हमारा जो बड़ा आराम से सोते हैं तो उन्हें चादर को ओढ़ाने चले जाते हूं, तो इस बात को देवताओं समझा नहीं। तो देवताओं के प्रश्न करने से कलयुग कहते हैं कि देखो जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाए ना
1: जी
0: तो उनका एकदम मंगलमय, पर जो सूर्य उदय से पहले उठ जाए तो उनका भी
1: मंगलमय,
0: पर जो सूर्य उदय के बाद में उठने को कोशिश करते हैं उनके तो मैं खुद चादर ओढ़ाने को चले जाते हूं ताकि वो आराम से सोए, ताकि हाँ सूर्य उदय हो जावे तो उठे। तो उसमें देवताओं ने प्रश्न रखे कि भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई जो सूर्य उदय से पहले नहीं उठते हैं तो जरूर हमारा चादर को प्राप्त करते हैं, पर हमारे चादर में क्या बसा हुआ है? रोग। तो यही रोग हमें और बाग आगे में जाकर के सताते हैं। रोग कहते बीमारी आदि ना
1: जी।
0: तो राजेंद्र जी हमें ऐसा जरूर इस बात पे सोचना चाहिए कि जो सदा रोगवश होते हैं तो कम से कम अपने आप में तो सुधार लावे। सूर्य अस्त ऐसा ना हो कि हो जाए तब आप उठो, सूर्य उदय से पहले उठ जाओ, अपना कार्य को करो और तब आपका दिवस भी मंगलमय होंगे। भाई राजेंद्र जी, कौन सा गीत आप रखने वाले हो?
1: हाँ, जैसा कि संजय जी आपने बताया सूर्योदय वाली बात, थोड़ा हम इस पे आधा मिनट लेंगे।
0: चलो एक मिनट ले लेंगे।
1: सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उसके बाद स्नान करके अपना जो पद्धति है पूजा पाठ की वो करें, जिसका जैसा है वो उसे करें, लेकिन इसके बाद थोड़ा योग
0: योग हाँ सही बात
1: योग आसन जरूर करें। और योग आसन अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो योग आसन, प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो योग आसन और प्राणायाम तो जरूर करें। ध्यान जब समय मिले जब कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय में योग और प्राणायाम करने से रोग मुक्त हो सकता है,
0: रोग मुक्त हो सकता है। तो जो सातवा कहावत है कि 14 और मृत्यु तुल्य में से सातवा जो है, जो आप अपने आप के बचाने के लिए आप जो कार्य करें, जो हमारे संतों ने संदेश दिए, तो आप उससे भी मुक्त हो सकते हैं। शांता जी भी कुछ कहने वाले थे राजेंद्र जी, तभी उसके बाद में फिर गीत को रखना।
2: जी, सुबह जाकर स्नान के बाद अपन कार्य जो है पूजा पाठ करने के बाद और सूर्य नमस्कार करे भी,
0: सूर्य नमस्कार
2: तो उसमें सब के सब योग उदलो में भी हो जाए, सब रकम कबिंग में हो जाए, अति सुंदर। हाँ,
1: सूर्य नमस्कार कोई कर सके तो बहुत ही उत्तम, लेकिन जो लोग की उम्र थोड़ा ज्यादा है या पहली बार कर रहे हैं योग, वो सम योग करें या सूक्ष्म योग करें धीरे धीरे।
2: सूक्ष्म योग क्या है?
1: सूक्ष्म योग मतलब छोटे छोटे योग जो हल्के रूप में है
2: जी,
1: हाथ पैर को हिलाना, कंधों को हिलाना, कमर को हिलाना और ताड़ासन करना, पूरे शरीर को खींच देना, ये सब सूक्ष्म योग में आता है।
2: जिमनास्टिक
0: जी सुबह सुबह करना चाहिए। भाई राजेंद्र जी, आप अपना सुंदर सा और जो गीत को रखने वाले हैं रख सकते हैं।
1: जी, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, गीत के जो बोल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, तो अब सुनेंगे एक प्यारा सा नगमा।